ये आकाशवाणी का जैसलमेर केंद्र है। आज 23 मई शनिवार है। श्रोताओं, हमारी पहली सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

সুমিতা ধ্রুমাদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী

और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है। और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु, यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल इंप्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्म योगी प्रारंभ किया गया है, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्म योगी के अंतर्गत आई गॉड प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध है। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख, पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस के हैं। यही पले बले, यही उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यही शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र

0: एक साथ जारी कर दिए जाएंगे, जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना ना की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हरेक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद भरोसे से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: तेजी से बढ़ता, विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता, आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है, लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प। न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एक्ट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की

0: समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
1: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें यहां पहुंचाने के लिए हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है कि इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस

इसको लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। UAE के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा ये सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को

सशक्त मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत, आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और

ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपीस, 75,000 करोड़ रुपीस का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है। साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है, यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी बोलता हूं, उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है, रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से

नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं, तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है। और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। आईआईटी को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके

0: सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं तो दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखे, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही है, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही है और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव, नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देखतुल, अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं व्हाट्सएप आधारित मैसेज पर आज के फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आपकी पसंद।

गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता।

श्रोताओं, आदमी और इंसान, अभी आपने इस फिल्म का ये गीत सुना। इसे सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है गोपा चौक जैसलमेर से रमेश जगाणी, योगेश जगाणी, राजलक्ष्मी और उनके परिवार के सदस्यों की। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का।

अगला गीत। इसे हमारे पास फरमाइश करता है भेजने वाले, जयनारायण व्यास कॉलोनी से गर्वित भाटिया, गरिमा भाटिया और इनके परिवार के जन। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म घर का ये गीत।

क्या है मुझको अभी तेरे दर से, जरा देख लूं मैं ये रुख की बहारें, ये पद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए है, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय।

श्रोताओं, मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के बाद कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम आपने भेजा है आपकी कसम, और भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं गांधी कॉलोनी से जेपी व्यास, ललिता व्यास, हरिओम और नेहा व्यास। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म आपकी कसम का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है आप सभी की फरमाइश पर। भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं दुर्ग ऊपर से ओम प्रकाश बिस्सा, सुधा बिस्सा, गोकुल बिस्सा, मेघा बरखा और पार्थ। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अखियों के झरोखों से, फिल्म का ये गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: और श्रोताओं, ये कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है। इंदिरा कॉलोनी जैसलमेर से गिरिराज और धरन की। आपने सुनना चाहा है फिल्म ब्लैकमेल में किशोर कुमार का गाया ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है दुर्ग अंदर से प्रकाश श्रीपत राखी पलक झलक परी और ख्याति की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म फैशन का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है आसनी रोड से, अपर्णा बिश्रा, रश्मि बिस्सा, युवराज और अभिजीत की। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अभिमान का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है फिल्म आरजू का। ये गीत सुनना चाहते हैं आशा भोसले, मुबारक बेगम और उनके साथियों की आवाजों में। सुनने के लिए फरमाइश आई है आप सभी श्रोताओं की। व्यास कॉलोनी से मनीषा, किरण, योगिता, रूबी, मीना, विवियाना और इनके घर के सभी सदस्यों की। आइए सुनते हैं फिल्म आरजू का ये गीत।

0: सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं
1: यही सोच कर रात भर

ओ दिल पर वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिससे फिदा है। ओ दिल पर वो महबूब हो तुम, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं तुमको मेरी वफा पे, जाने क्या क्या

0: करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
2: शिकायत आपसे हुई नहीं
0: सारे शहर में आप कोई नहीं

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जैसलमेर से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है और उन्हें इस संकल्प के लिए भागीदारी निभानी होगी। देश में 47 स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अपनी हाल की 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ ग्लोबल एक्सपोज़।
1: प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,60,000 से अधिक भर्तियों पर काम चल रहा है, इसके लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थी, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया।
3: आप जब भी कोई फैसला ले तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित।
1: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। पहली मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर करीब 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। हाल के दिनों में इन पर अब तक लगभग 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कोटा में एक नए इलेक्ट्रिक लोको शेड खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे बिजली के इंजनों के रखरखाव और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोटा में इस लोको शेड के बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अजमेर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार बनाया जाएगा। इस पर 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत, बजरी खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में 392 से अधिक मामले दर्ज किए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पिछले महीने जारी निर्देशों की पालना में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाया गया है। धौलपुर और करौली जिला पुलिस की ओर से चंबल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: इस समय अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं ग्रामीण परिवारों का कार्यक्रम पणिहारी।

0: तो देखो निकलना ही पड़े। तो वे मैं सबसे पहली जो सावधानी है थानू दियो ना, ये सावधानी बड़ी है।
1: अच्छा बताओगे की
0: तो
1: सावधानी है?
0: आजकल जो युवा वर्ग है नी, उन्हें सिंह उठाए
1: अच्छा
0: के भाई मथेर महीना यहाँ पूरा ढक बेवे
1: ढक
0: थोड़ा ढकोड़ो चेहरे में तो लगतो को हाथों ने पूरा ना ढक ले और पूरे शरीर ना ढक के और पछे बाहर निकले ताकि कि ये को गर्मी है जो सीधी शरीर में बढ़े को नहीं। और जे जाना में गांव में अपार गणेश गणों के तो आधो किलोमीटर मुन्नो किलोमीटर किलोमीटर भी को है नहीं पूरा पण के नहीं के अगर गर्मी लगनी है वो तो घर से बाहर निकले लू पी लगे
1: सही बात है,
0: तो जितो हो सके घर घर से बाहर
1: कम
0: बिल्कुल नहीं
1: निकलो।
0: निकले और जे निकले तो पानी पी जरूर के निकले।
1: सही है।
0: और पानी भी वो आजकल बोतलों वाला ना पानी मटकी रूपी है वो मटकी भी नवे कुंभारी घड़ोड़ी वे कोरी मंडोड़ी अना शीतला सप्तमी हुई के अनु आखा तीज माता जी को
1: आखातीज
0: कोरी
1: मतलब
0: मटकी मंडी जी उबी मटकी रो पानी जी को सिरी आलो हुई नहीं ओड़ी सिरी तो पहले थे के थी बुआ जाओ अपनी
1: कौन
0: मिट्टी
1: यार।
0: में जो को सिरी है अपनी मिट्टी में गई नहीं अपनी मिट्टी का जो को गीत है वो केत रखे गाय जी अपनी मिट्टी की जो को सुगंध है
1: खुशबू है
0: ओ
1: सारी।
0: चारे पासे फैलो रही है उबी सुगंध ओ सुगंध ठेठ विदेशों तक पुगी है टीना बहन तो ओ सुगंध वास्तव में अपने खुद तो महसूस करो।
1: सही है, लाख तेरी बात है।
0: यानी कि वे मिट्टी री जो पानी री महक है नी वो हिकार को अपने शरीर में महीना जो आंतरा है ना वो एड़ी ठंडक बापरा भी के वो गर्मी अपन झटकर तो कौन पकड़ सके।
1: सही
0: पहली
1: है।
0: बात बीजी बात कम निकलो पानी पी निकलो और तीजी बात हमें जज कर घरे जाना है अपना जरूरी है कोई काम है या जा रहे हो तो ओत पुग गया हमें पुगते सख्त हो गर्मी पानी लाओ ठंडो पियो है पियो हो और एकदम अजकाला कूलर भी जानो बीजे एक चलावे ना हीटा में
1: एसी,
0: लगावे फ्री भाई।
1: हाँ एसी एयर
0: हाँ उवे
1: कंडीशनर।
0: में तो बिल्कुल सीधो नहीं बैठना क्योंकि हमें अपने तावड़े आया और बैठा बजाए भी ठंडक में
1: सही है।
0: तो नहीं मर तो आदमी मर जाओ। तो इस वास्ते ए विशेष सावधानी रखनी कि जगह जगह अगर कोई एसी वेसी लागू हुई नहीं तो थोड़ी देर बाद बैठ जाओ थोड़ा
1: सही।
0: शरीर थोड़ो सी साधारण हो जावे पछे थे मोई ठंडक रो आनंद लो भले कोई ना कौन पर छोटी छोटी बात अगर टीना बहन ध्यान में राखी जाए तो अब कहीं को नहीं है एक महीनो जे कोई घनी लंबी चौड़ी बात को नहीं इंद्र राजी हो नहीं इन ठंडक बापरी नहीं
1: सही बात
0: और ठंडक बापरे चाहे नहीं बार एक म्याणी तो सलाह हो तो कहते कहते भूल जाओ आजकल बोड़ो स्वभाव न्यारो हो गया म्याणो तो
1: है। ते भूलोगी कौन
0: के
1: है?
0: ये तावड़े में क्यों बाहर निकलो फुटरी पणियारी सुनो नहीं आपरी
1: हाँ पणियारी सुने अड़ो असल में ना
0: बस
1: संगीत सुना सो।
0: पणियारी में बातों करो बे घड़ी सुख दुख री बात कर जाए फुटरो सी संगीत सुनाओ पछे वीरी होड़ी कोनी तो हमें थे आज की कई नवी कोई फुटरो सी गीत लाया हो के कोई थोरी पसंद लाया हो म्याणी पसंद लाया हो
1: थोड़ी
0: के बहनोरी
1: पसंद
0: पसंद लाया हो
1: बहनोरी पसंद भेड़ी थोड़ी पसंद भेड़ी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
1: सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। गली गली।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कागज
3: देखो
2: सियाले री रात मोटी वे
3: सही
2: और उनाले रो दिन मोटो वे तो ये इतने मोटे दिन नो
3: की करे
2: या बैठे हुआ बैठे बंतल करे मैं आधो घंटो घंटो पड़ी आ रही घंटो बीजी कोई बंतल भी करो तो वो में 12 घंटा काणो खुटे।
3: सही बात।
2: तो अपे तो आज बेनो से बात कर जे के ये समय रे महीनो हमें जको आप सुनो है ने उद्योग धंधा वे बेनो घरे बैठे कमाई सके आप छोटो मोटो काम शुरू कर सके तो सीधी बात आ भाई पापड़ आगे जो पर दादी और नोनियो पढ़ नोनियो तो न ध्यान वे तो घरे पापड़ खींचिया बीजिया बनाती करती हो और आप घर सु चलाती और हाथ में अड़ी सीरी होती कि आदमी एक बार खावे तो स्वाद जिंदगी भर नहीं भूले। पर धीरे धीरे धीरे धीरे ए जो कुछ चीज है ना बातों में तो आ गई है कि घरेलू उद्योग होना चाहिए कुटीर उद्योग होना चाहिए। बहनों अपे भी घनी बार अपनी बहनों ने कोई के 10 जनियो मिलो पछे कोई काम शुरू करो पछे सरकार लोन देवी लेकिन हकीकत

0: मैं देखियो जावे तो ये दिन ब दिन सी चीज खत्म हो रही है।
1: सही बात है, करण आला तो करे, कुछ लोग अपना समूह बनाए करे, तो हमें वो
0: हाँ
1: वाली बात हो गई ना कि वो थे करो ही पढ़िया,
0: मैं तो करो
1: तो थो
0: दार।
1: सुने पैसे सु खरीद ली सो, वो वाली बात
0: हाँ
1: आएगी
0: ये बात है।
1: है ना। ओणो की चीज थे करो ही, तो हूँ थो के नया सीखीस, मने ही बताया तो हूँ ही करीस,
0: बात ये हुई नहीं बात।
1: मैं थे यो करू आज अपोरी बहनों ने पूछ सिखाओ क्या मैं पहुंच चावलों रा खींचियान भुजिया कॉकर बना सो।
0: ये नहीं चुको, एक तो वे बात हवा में
1: हाँ
0: और एक वे बात धरातल में।
1: सही बात
0: तो रुकी हवा में बात करो कि बहनों खींचिया बनाओ, भुजिया बनाओ, ऐ
1: हाँ
0: करो, अचार करो,
1: सही
0: वो घरेलू
1: बात
0: उद्योग करो,
1: है।
0: पचास 10 जनिया मिलो। लेकिन हकीकत में अगर आप एक कारण बैठा हुई तो वास्तव में आज री पीढ़ी ने यह सब चीजें आवी कौन पाई, क्योंकि जो थोड़ा बात करी नहीं कि वो बनावे वो सब जगह बनावे, बाजार में हमें आजकल सब मिले तो खरीद लिया सो।
1: सही
0: चलो खरीदना भी आपकी जगह एक ठीक है, वो भी एक कोई ना रोजगार ही मिल रही है, वो कोई गलत को नहीं। पर थो एक बात सुनी हुई तो घरे चीज,
1: सबर गति हुई
0: हाँ ये
1: वही
0: बात
1: है इस
0: है,
1: क्या होती थी तो।
0: घरे बनावड़ी चीज सबर गति हुई। तो हमें सबसे पहले तो देखो आप ही बना लीजिए भुजिया
1: ठीक है भाई
0: चावल रहा,
1: जी।
0: जुगो की ना जो खिचड़ी कड़ी कर ली, गर्मी है नी संजारो हमेशा हड़को धोन होना, हड़के धोन में खिचड़ी कड़ी
1: सही है।
0: बाट कड़ी या कड़ी रोटी
1: सही है।
0: पासड़ थोड़ा सीख थे भुजिया तलो, एड़ा स्वाद लगे टीना मैं न कहूँ के थे पूछता रह जाओ।
1: सही बात है।
0: तो भुजियों में भुजिया और खींचिया और
1: खार
0: खार बड़ी,
1: बड़ी
0: एज को तीन चीजें चावल सु बने और उरी विधि अलग अलग है, लेकिन उरी जो को बनावन रो तरीको है जब में खार पड़े या नमक पड़े थोड़ो जीरो पड़े तो वो सब एक चीज है।
1: अच्छा।
0: हमें आप घणो नहीं तो बेकला चावल पिसा लो, चावल भी कया के हलकोड़ा चावल जो को आवे ना जिके सो पे खिचड़ी बनाओ या जो को
1: किणियों
0: सब सु कम वाला जो को चावल वे उरी बनावड़ी चीज स्वाद बने।
1: सही।
0: या कोने के महंगा वाला जो को चावल ना बापड़ी जी घरों में वो और अगर आप बनाओ भी तो इतना स्वाद कौन बने।
1: फूले को नहीं उतना बढ़िया है।
0: हाँ तो सबसे पहले तो चावल ले आओ, वो चुगो और धो लो बे तीन पानियों से और सुखाए दो एकदम
1: आपड़ा एड़ा
0: बढ़िया।
1: बढ़िया है जो को
0: हाँ
1: सुखना है
0: एकदम
1: सो।
0: बढ़िया आना, ये में तो 1 घंटे में सूख जावे मन के वो सूख जावे, तो चावल तो
1: चावल
0: की
1: भी
0: चीज है।
1: चल।
0: तो वो सुखाए दो
1: सुखा दिया।
0: पछे संजारा या तो बीजे दिन चक्की, तो देखो सब जगह हुई जे चक्की में वो ना बढ़िया बारीक पिसाए मंगा लो।
1: ऐसा है।
0: हमें एक पापड़ खार मिले बाजार में जो को लगभग सब न ठावे और मिले भी है सब जगह, पापड़ खार मंगाए लो और नमक तो अपर घरों में हुई जे। हमें रही जीरे री बात, कोई ना जीरो पसंद हुई कोई ना कोई नहीं हुआ पसंद, क्योंकि जीरो गतन सुखी हुई थोड़ा सी पीला सा भी,
1: पीला सा भी।
0: और अगर आप जो जीरो नहीं गत हुई तो वे एकदम सफेद जग चीज बने। तो हमें जो हुए बिकलोर बिकलोर सीधा भेड़ा उतना सारा नहीं करना, क्योंकि जो हूँ आना सीखता हुआ हूँ सीख रही हूँ कोई चीज, हमेशा कोई भी चीज बहना अगर सीखनी हुई आप ना या आप कहना सिखा रहे हो तो हम जो पाव भर अटोलो या बटकी भर अटोलो
1: बटकी भर। हाँ
0: पहलडू,
1: सही।
0: तो अगर वो बटकी भर आटे रो अपना भुजिया एकदम बढ़िया बने तो पच्छे अपन किए हुए सो कॉन्फिडेंस बन जावे अपन मन में, ए हुए ना हूं कर सको ए मनो आवे।
1: हाँ
0: तो सबसे पहले तो बटकी डेढ़ बटकी अटो हुए बिकलो में सु
1: लियो।
0: लियो लेके और टोपियर में ना पानी चढ़ा दो गरम,
1: चढ़ायो।
0: लोटो भर दे तो बटकी डेढ़ बटकी अगर अपे अटो लाई तो लोटो भर तो पानी हुए में खट जावे। ए तो
1: हाँ
0: अंदाज सब न हुए क्योंकि चावल देखो पानी तो ले जाए,
1: सही।
0: वो में थोड़ो सी खारो थोड़ो सी नमक गत के और वो आटो है जिको उमें
1: गद्दू।
0: गद्दो भुजिया सबसे सरल है। और पछे उमें हाथ मत रखो कुर्सी सु करो ना हलाम तारो,
1: फटाफट
0: हाँ
1: लो।
0: फटाफट हलावनो पड़े नहीं तो की हुई में
1: गोठो
0: गोलियो
1: बढ़
0: गोलियो
1: जावे।
0: बन जावे, तो
1: गोठो नहीं
0: गोलियो नहीं
1: बढ़े।
0: बननी चाहिए, तो वो समझो वीरी खींची बन जावे खार हो जावे नमक और पानी और चावल चार चीजों जुए। जीरो थोड़ा पसंद है तो भले दस सको
1: हाँ
0: हूँ कौन कहता, क्योंकि मन्ना वो पिलास थोड़ा कम जचे,
1: अच्छा।
0: हमें वो खींची तो बन गई। हमें एक मैनियो लो, मैनियो ले डागोल जाओ। अच्छा एक पैरडी बात तो कहना बेनो ना भूल गया
1: ठीक।
0: कि ए कौम कद करो के देर साकवे तावड़ो तपे कौन उस पहले,
1: हाँ
0: उस पहले थे खिची तो बना लो सूरज तपे नहीं उस पहले करो तो थोड़े पसीनों को नहीं आवे और थोड़ो हाथ भी कौन
1: बड़े
0: बड़े। हमें तावड़ो
1: क्योंकि
0: तप गयो सागेड़ो हमें यहाँ पे टोपी ले गया डागोड़, तो हमें नौनी याद आवनी जे हाथ
1: सही
0: भी बढ़ से और तावड़ो भी लग से
1: है।
0: और पचे काया भी हो सो पचे चया पर टाबरा में थे,
1: सही बात है।
0: तो ओड़ो को हम नहीं करे। हमें तो देखो हाँ बदक महीनो है एक पंथ बेक आज
1: हाँ
0: थोड़ा बेगा उठो बेगी आप अच्छा कॉम कर्म्स अगर पहले आप नहाए लौटना मैम तो

0: अति उत्तम है।
1: सही बात है।
0: अपोरा जितना भी शास्त्र है, अपोरा जितना भी जो भागवत है, गीता है, आप जो वहां पे कथाओं सुनो या आप बातचीत करो या कुछ भी करो, तो वे में सबसे पहले एक धर्म बतायो है के लुगाई नो, एक महिला नो सबसे पहले नहाय के रसोई में जाना चाहिए और काम जो भी आप करो तो अगर नहाय के करे तो उनमें शुद्धता ज्यादा हुई।
1: बिल्कुल सही।
0: हालांकि यह चीज दिखे को नहीं पर वास्तव में वो है चीज। अब बताओ कहें सबरगत हो तो वो डेडो सबरगत हो जा सके।
1: सही है।
0: अगर आप डा बना लो चालनी भुजिया करो नहीं घसता जाओ एक जगह से पूरी ढुगलियां ढुगलियों में अच्छा समझो 10 मिनट भी को नहीं लगे।
1: होने टाइप सही है।
0: और पछे थे संजय राव ने उथल दो चालनी दाई वे जो जो ढुगली ओड़े जो ना उथलो बीजे दिन तो भले थे तड़ो नहीं बना इतना स्वादिष्ट हुई के पूछो मत।
1: सही
0: हमें देखो बहनों ऐ तो हो गया भुजिया हमें बनाओ खींचिया वो थोड़ा दूर आए।
1: अच्छा
0: हमें जो खींचिया में भी अड़ोकी को नहीं जो आप बढ़ाए नी खींची
1: खींची
0: और तरीको है पानी गर्म चढ़ाई दियो चावल उखार नमक गदियो अटो गदियो खींची बन गई हमें उनसे उतारो।
1: अच्छा
0: उतार के पूरा ढोकला बनाओ।
1: अच्छा पहले खींची बनाई बच्चे ढोकला बनाई जी
0: हाँ।
1: मैं सोचियो अटो उस से नो ना पानी में उबाल के
0: ना ना ना ना ऊरे अच्छा। बच्चे पोला कुन हुई अच्छा। वो बच्चे थे घणी बार देखो थोड़ा कड़क हुई खावण में।
1: अच्छा देखो है बात में बात करो तो ध्यान पड़े है ना मैं जेडी सीधा चढ़ाए देती तो बच्चे पोला कुन बनता।
0: अरे पूछ तो आदमी पाटन भू जावे
1: सही
0: हर चीज पूछ के करनी
1: पूछ के कर।
0: अरे कद कदे आप और बहन अरे ठली ठसकाई भी हुई हूँ क्यों पूछो पूछने में क्या पैसा लगे।
1: सही है।
0: हर चीज अगर कोई चीज आप ना ज्ञान नहीं है पूछ ले
1: सही
0: कदे कदे यो होवे कोई आनो लगे साधारण स्त्री लगे कोई एकदम सिंपल वो ना कई सारी बात उठा हुई
1: देखो गैर
0: पर जगह ठसकाई हुई कोई कपड़ा और मुंडे री उस से मना सब आवे और चीज बिगाड़ आटा रा सत्यानाश कर धन बिगाड़ ओड़ो कम नहीं करनो पूछ लेवनो। हमें वो खींची बन गई खींची रहा थे हाथ से बनाओ ढोकला।
1: अच्छा
0: ढोकला यानी कि थोड़ा मोटा मोटा ढोकला बनाओ और उसे बीच में करो खड्डो ताकि वो पूरी तरीके से सिज जाए।
1: अच्छा
0: पछे बड़े टोपी में पानी चढ़ाओ और वो ढोकला ने पानी में बतो तो ओ कि 5 मिनट में ढोकलो ऊंचो आ जाए क्योंकि सिजोड़ो तो वही जाए पर उन्हें थोड़ो और सिजावन बगा पानी रमेनो उन्हें उबाड़ो दराव नहीं तो और ढोकलो जय ऊंचो आवे जो उन्हें निकाल लो। कोई रे तो घर में बड़ो नो की माए तो घर में बुजुर्ग है खींची भावी तो घर रो अगर घी निकाल रो है तो घी पो चुपड़ थोड़ो सी मत जीरो बुरका प्लेटों में दो तो एक नवी चीज हो जावे। और टाबरा ना देखो अगर जे आप खुआ हुए टीना बहन तो उम्र बगा एक नवी चीज हो जावे। और आज रे युग में की हो के हर दो सफे बच्चों ना दो हमें बच्चा करे को हमें बच्चा सीखे को अरे आप खुद काम करना छोड़ दिए तो बच्चों ना करा दोस्त दो अपो खुद दो रहा हूँ शरीर ना दो रहे कौन करो बाजार से ले आया पुड़ी को खाया जनजुटी तो खींची भी खाए सके और पछे हुए रो की करे कि थोड़ा उरे तेल लो हाथ कर और वो ढोकला ना सारा ना मसाल अपो जो लोई बनावे ना पूरी लोई को लोई बनाए के उरे लोहा बना दो लोहा बनाए के पाटे में बट लो बेलनी वे तो अति उत्तम है नहीं तो बेलन से भी बट सके
1: जाना मैम सड़सड़ बट्टी से नहीं तो की जो मैं थोनो कहो नहीं सीधा अपन ढोकला करे नहीं तो उन्हें पछे थैली में करना पड़ी नहीं तो सही बट्टी जे भी होनी दूरा बट्टी जे चिपके बच्चा है ना
0: चिपके वो ताबे नहीं आवे नहीं चीज अगर अपन उन्हें मिश्रा जी को उबाला नहीं तो उसमें की भी लोच पैदा हुई लोच यानी कि चिकनाट चिकनाट हुई तो टूटे कौन और वो पोला भी बने और भले आप थई कर लो नी मथा मथी रख लो तो ही वो चिपे को नहीं।
1: अच्छा
0: और पछे बेड़ा बेड़ा डागो जाए सुखा दो
1: तो है बढ़िया चीज
0: वो यहाँ कोपरो वे जा सुख के ऊंचा आ जावे और कोठी भर रखो अंदाजे
1: के 12 महीने रे बेड़ा करो पछे तुम बताई
0: तो एक खींचिया भी आप घरे आराम से बना सको। अगर कोई रे शरीर में पोच हुए और जिज्ञासा हुए और लालसा हुए काम करने की क्षमता हुए बे पैसा जोड़न की ताकत हुए तो एक खाली उद्योग धंधा कर लो बहनों। अरे कवन सु कोनी वे यो करे करके बाजार में जो बाजार में चीज बिकने बगाटी ना बहन आ रही वो कोई लुगाई बना रही।
1: सही बात है।
0: घरों में महिलाओं बना रही तो अगर आप चीज बनाओ तो अपन मेहनत रहा पैसा ये मैं रुपये में 2 रुपया फायदो है।
1: सही है।
0: हालांकि लागत ये की लगी चावल लगी।

0: और खारो बहुत सस्तो आवे, नमक बहुत सस्तो आवे, थोड़ो घणो आप अगर चूल्हे में करो गाँव में तो कहीं लगने को नहीं। और हमें आजकल गैस भाप रही है, चलो गैस में कर लो तो कितनी लग से, तो पैसा बहुत कम लगे। मान लो आप समझ लिया 50 रुपया लग गया आप किलेरा, और उरा 250 रुपया आप किलेरा कमा सको, तो यानी कि देखो कितना गुणा फायदा हो।
1: सही बात है।
0: तो बूंद बूंद सु सागर भरी जब लगे चीज कम है आप छोटी चीज लगे, लेकिन ये में फायदो खूब सारो है। पर ए है कि मेहनत है,
1: मेहनत
0: थोड़ी अकल है, थोड़ो आलस रो अगर आप जो त्याग दो,
1: त्याग दो तो हमें पर तो ये सब चीजों तो बताई आप परी बहनों नो खार बड़ी आप पछे बड़े डिस्कस कर सो।
0: खार बड़ी तो और ऊंची है।
1: हाँ साबुदाणो भिजो रख दिया, 2-1 घंटो में साबुदाणो भी सारा असल भिज जावे, नहीं तो रात्र भिजो रख दू, सुबह उठ मारी खेची कर लू, रंग एकदम सफेद जग हो जावे, रंग चेंज हो जावे तो अपन ध्यान पड़ जावे। पछे नमक मिर्ची जीरो थोनो जो गतनो है मसाले वाला गतना, हाँ नहीं तो नमक गत सीधा उरा कर लो। अगर देखो कुछ लोगों ने आया कि वो आखो दोनों बढ़िया लगे क्योंकि तड़ी जे तो और बत्तो फूले, उमा भावे तो उमा दे दो तावड़े में, और नहीं तो ना बिला मिक्सी में थोड़ा पीस लो।
0: पर तो बट्टी जे तो होनी,
1: बट्टी जे होनी ना तो चम्मच सो देना।
0: अच्छा चम्मच सो देना,
1: चम्मच या कुर्सी कैसो जिसको छोटा दो तो फूले अच्छा है, तो ते कम तेल में सो
0: रहा करना ज्यादा अकलमंदी है,
1: कम तेल में अच्छो।
0: चतुर नारी रो कौम है कोई भी चीज छोटी बना सके
1: क्योंकि तेल कम लगे,
0: बात ना पक्को वेगी होते।
1: देखो देखो काम कैसे उन्होंने थोड़ो घणो तो ध्यान पड़से ही पड़से
0: है।
1: तो मैं पहले बहनों रो मनोरंजन करवा जे, पछे मनो बड़े सिखा सो
0: खींचे तड़ो तो सही
1: करियो ने,
0: खाते बीच में मनोरंजन होसे
1: ने ना करियो ने तो क्या वो ना छोटा छोटा छोटा छोटा वो ना पतावड़े में जाए दिया जमचे सो, संजारे तक तो सुख जावे, संजारे भले तड़ खाओ वो ना से।
0: ए बात सही, तो हमें भुजिया भी तले और साबुदाना खींचा जो था बताया बहुत बढ़िया बताया। वास्तव में आना जो पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास की ई भी एकासना वास्तव देखो चले जाए, और कदे कदे टबरा ना भी रुचि भी एड़ भावन तो ईज भी तल के खा सके
1: काली मिर्च गतो है मैं तो और ही अच्छा लगे यानी
0: सर फरफरा लगता उसे।
1: बिल्कुल
0: बहुत बढ़िया बताया टीना मैंने था, पर हमें देखो थकावट हुई है, बहने बेचारे तो काम किए तावड़े गए भुजिया दिया करिए, हमें पुछो एक गीत सुनाओ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लो भाई सुबह बहन थोड़ी फरमाइश माता सुनाए प्यार सो लोगी हमें। देखो अपन चावल तो भिजोया, इतनी सारी चीजों बनाई, खींचिया ही बनाया, भुजिया ही बनाया, साबुदाना रा खींचिया भुजिया हो गया बेड़ा।
3: वो जरूरी है नहीं, देखो सगार में वो भी चाहिए।
2: हमें पर जो कट्टो बच्ची हो रही खार बड़ी बनाने सिखाओ बहनों ने।
3: लो अभी बात सही है, खार बड़ी तो एक आप में एक अलग चीज है। अपो भी खार बड़ी कोई कोई कोई फूल बड़ी भी करी बाहर में उन्हें फूल बड़ी भी कही। और हो सके आप बहनों ने ये चीज की जानकारी भी नहीं है क्योंकि भुजिया खींचिया तो मैं देखी है बार में हुई, लेकिन ये जो खार बड़ी है मैं कम देखी है पर गौर है महीना। तो ये भी एक बढ़िया चीज है अगर पर बहनों बनावे तो ये में कोई घनी मेहनत को नहीं और ए छोटी सी चीज बने पर फूल के इतनी सुंदर लगी तलोड़ी भी खाओ नहीं खाओ इच्छा नहीं तो आदमी रेकार को मन हो जावे की ना।
2: अरे भी कल्ला है नहीं कि कोई भी छोटी हुई तो अच्छी बड़ी फूल जावे, कोई भी बड़ी हुई तो भी उतनी बड़ी कोनी फूले
3: तो पछे वो बिगड़ जावे, वो पछे बिगड़ जावे पछे वो खाओ में भी अच्छी कोनी है। पर ई में थोड़ी सी सतर्कता अगर रखे नी तो चीज बढ़िया बने। और ई में कोई घणी लंबी चौड़ी वो आई कोनी, हमें जो अपन पहले भुजिया और खिचिया बनावना बताया नी तो अच्छा ई में घणी मेहनत भी कोनी।
2: अच्छा
3: हमें की करे के थे आप जो गाड़ा और गाड़ करो नी जो पानी लियो उर में ना चावल और आटो कर दो और गाड़ बना दो सीधो सी उर मैं कहीं मत करो नमक बीजा की ना काल बनाए रख दियो हमें बीजे पास है चूल्हे मथे थे टोपियो या थोड़ा मोटो ठाणो क्योंकि चावल तो बड़े ही नहीं
2: ओ पहले जो को पलेम था पिता लाडू टोपियो बडोड़ो
3: चल नहीं तो स्टील हो गया भले या कोई भी हो तो मोटो थोड़ो हो नहीं उवे में लोटो डेढ़ लो तो पानी कर दो और उवे में ओज खार और नमक नमक घणो नहीं गतनो कम गतनो क्योंकि अगर कोई भी चीज में तो आप हमारा खार बड़े की बात कर रहे हो अपे साग भी बनाओ नहीं अगर में थोड़ा सी नमक कम रखो ना तो वो सब्जी जो मिठास है वो अपन ठा पड़े और थोड़ा सी नमक बतो तो वो सारो सत्यानाश हो जाए। बगा हर चीज में एक और भी बात है कि बेसन भी अगर को चीज बनाओ जो भुजिया है बेसन की पापड़ी है कोई नहीं जो है कोफ्ता है समोसा समोसा तो चलो मैदे रहा कोफ्ते में भी जो बेसन आप गाल करना है अगर जी थोड़ा सी नमक कम रखो पछे थे देखो गुरु स्वाद।
2: अच्छा
3: और जो नमक थोड़ा तेज हुई तो खाण में एक खाओ बीजो कौन खाई सको
2: सीधी हो
3: गया बगा ये में भी खार बड़ी में किए खार तो हुई जाए वही खारो ही हुई नमक थोड़ा कम रखे हमें वो पानी जब उकले पूरे बिचलो उकाड़ो जी के ना कही नहीं बिचलो उकाड़ो आवे जाने एक हाथ तो टोपियो पकड़े वो जो गाड़े रो गाड़ा पर बनोड़ो है नी चावलो वालो उए ना उए गरम पानी रे मन यो खणी गए
2: और
3: बीजोड़े आसु कुर्सी सुए ना हिलाव तारे तो एड़ो धीरे धीरे तरीके से बढ़िया यो बनतो रहे अपन यो भी लगे कि ना अपन अपना ठा पड़े कि बन रहे हो तो छेको छेको हाथ घुमाव सु गुटली भी कोनी है और वो चावल है जो पानी आप पूरा सोख ले और वो हिलाव तारो तो एकदम खींची दई तो खींची तो की गोंठो गोंठो भी एकदम यो मोय सड़ बीजो की कोनी है और चिकनो सी तैयार हो जावे गांव।

0: थोड़ो ठंडो हुए तो थोड़ो और जो आठरे नहीं कोई चीज, ये तो अपन चीज बनाओ तो वो टाइम थोड़ी पतली भी पतलो गाढ़ो से तो खारबड़ी कौन बने, जब आठर जावे तो पछे वो आप हाथ में ले सको। जो आप लड्डू कोकर बनाओ तो लड्डू तो थोड़ो काठो हुई वो सु थोड़ो पतलो, हमें थे वो डागोड़ में से जाओ पर ये में एक सुख है तो तावड़े में बड़ने जरूरत थोड़ी। अगर आप को ना मैणिया है छोटा छोटा या लकड़ी का पाटा है या बड़ी परात ले ले, मैं मैणियों बिछा दे छोटा छोटा और पंखे रे नीचे बैठा बैठा वो टोपिए सु अपे जो चीज जमीन में खिरोड़ी उठाऊ ही कोकर पांच उंगलियों से उठावे, यो नहीं कि एक हाथ से औटी खोंगी उठा लो ना, चार उंगलियों पांच अंगूठो भेड़ी यहाँ चीज ना पी उठा के और वो सीधी मेणी मत रख दे।
1: ऊंचे सु बेड़ी दे रहे हैं कड़िया
0: हाँ
1: को।
0: भेड़ी कर उंगली नीचे से उंगली ना उठा के और टपाटप टपाटप टपाटप जो थो देखे हुए तो घड़ी बार फोटो में गणेश जी रा जी को लड्डू हुई
1: हाँ
0: कया
1: मोदक
0: लड्डू
1: मोदक।
0: मोदक वो आकृति रा खारबड़ी हुई आकृति रिज हुई ओ थे नहीं हुई ना पाटे में रख के पछे थे उठाए के तावड़म जाए रखो, कोई जरूरी को नहीं कि थे तावड़म बैठ के इस करो।
1: हाँ अरे वे भी अड़ो आड़े तावड़ो में, क्योंकि
0: ये
1: जितनी
0: तावड़े
1: तीखी
0: हाँ
1: धूप होवे उतनी
0: बरसात
1: हो।
0: हो गई नहीं पछे वो तावड़े में खारबड़ी को नहीं, खारबड़ी हमेशा जेठ से तावड़े में ही हुई तो ए तावड़ जो एकदम तीखो है नहीं ओ वे खारबड़ी जो वो तो लंदो दाई हो से भाई, खींचियो तो पतलो हुई जट सूख जावे भुजियो भी पतलो हुई सूख जावे, ये तो यो लंदे दाई आप रख सो
1: हाँ
0: मते जब तेज तावड़ो एकदम पड़ से नहीं तो ओ फूटे
1: जाली बन
0: वे रे
1: सो।
0: मोयनो जाली बने और वो जाली एड़ी फूटी कुदरत सु बने, देखो ये भी एक कुदरत री चीज है तो उर मोय जाली बने पछे उन थे तड़ो तो और वो फूल जावे ज्यादा और मोय सु भी पोली हुई और वो जाली भी अपन दिखे ही बाकायदा और
1: हाँ
0: ऊंचे सु तिखी तिखी हुई। मोदक रो जो फोटो अगर जे बहनों कह देखी हो से तो वो मोदक री आकृति री खारबड़ी बनोड़ी हुई, तो
1: बिल्कुल
0: देखो टीना बहन बीजो तो अपोरी बहनों सुनी हो बना से जरूर एक बार बना के देखे। और मैं शुरुआत में भी ये बात आपको बताई है कि कोई भी चीज अगर आप शुरुआत करें तो एक कटोरी या छोटी
1: कम
0: सी थोड़ी सी चीज लेके ए तो चलो आप ये चावल वाली बात करिए ईज भी अरे जो घर में लड्डू बनाओ सियाड़ा में जो सौंदा बना भी वो लड्डू आप उन्हाड़े में बना सको नहीं सूठ जगह लोद
1: लोद
0: गल दो,
1: गत दो सही
0: लोद एक ऐडी चीज है वो इसु शरीर में बहुत ज्यादा ठंडकार हुई
1: शीतलदारी।
0: आप आना कहो ना कि शरीर ने ढक ढक आए बो और पानी पी बो फुटरो लोद रो एक लड्डू खाओ नहीं पछे भले थे पानी मत पियो न को कोई ढका ढकी
1: खोपरो
0: करो
1: मिश्री खाओ नहीं सुबह सुबह
0: ठंडो
1: खीर
0: ना
1: बनाई
0: गर्मी
1: जिसको।
0: लगे को नहीं, तो ईर वास्ते ऐ जो चीज है पौष्टिक जो आहार है हमें उवे में पछे की है के हमें आप देखो नहीं टीवी में भी सुनाई खबरों में भी सुनाई आप भी बोलो है कि अगर हाँ है कोरोना काल जी को आए तो उवे में तो कोई भी अड़ो मुंह में किरड़ू रहे हो सके ना ये बात ध्यान में कोनी के शरीर में ताकत होनी चाहिए
1: सही
0: जिको रे शरीर और मोह ताकत थी वो बाकायदा मोनो कोरोना हुए ही बने
1: हाँ
0: और जिको कहने कमजोरी न सती तो वो पकड़ी जड़ में आई,
1: हाँ
0: तो कहना मतलब है कि अगर अपारे शरीर रे महीना इतनी ताकत हुए इतनी क्षमता हुए कि आप हर रोग सु
1: लड़न
0: लड़
1: दे।
0: सको तो उर वगा कोई तीर भाला तो अपन लेना को नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनो
1: खावन
0: खाओ
1: पीन
0: पीन रो
1: ध्यान
0: ध्यान रखना
1: रखना है।
0: उवे में भी एक होने का 10% खाओ थोड़ो
1: तत्व
0: सी
1: वाली
0: खाओ
1: चीज
0: पर
1: खाओ
0: हर मौसम री चीज हर मौसम में खाओ।
1: बिल्कुल सही। हमें जो कि नहीं पहले आले लोगों रो खावनो पीवनो बढ़िया है तो
0: हाँ
1: है पहले आला लोग बेचारा की खाता था मौके ने अड़ो खावन रो घणो की
0: टीवी
1: कोने
0: वाला
1: है
0: तो
1: तो,
0: हाँ
1: लेकिन घर रा दूध घी दही ये सब घर रा था। हमें देखो जो को बाजार रो है तो बाजार रो भी तो है वे सो अपो जो को पौष्टिक चीजो है पूरो सेवन करो। जो पहले आला की कहना मौसमी फल खावनो चाहिए
0: हाँ
1: है
0: मौसम रो फल
1: रुत रो
0: खाओ।
1: फल हर खावनो चाहिए नहीं।
0: सही है
1: मेवो है तो थोड़ो मेवे रो भी सेवन करो। हर चीज गर्म को नहीं करे थोड़ी मात्रा में अपो सब चीज खाए भी सको।
0: भाई अपारी प्रकृति अपारी संस्कृति अपारा माए तो एड़ी प्रथा चलाया गया कि अपन के थी दोरो होनी जरूरत को नहीं, गर्मी में बादाम कौन खाई जाए पानी में बचो
1: पानी
0: खाओ
1: में बिचो
0: बड़ा
1: खाओ।
0: सरल सरल तरीका बढ़िया बस करण आलो भी तो चाहिए नहीं
1: काजू बेला किसमिस खाओ तो वैसे ही ठंडा
0: मैं तो कहूँ
1: रहे।
0: तेरे किसमें साथे भिजो रखो अगली मूंगफलियारी में खोया बहनों ने क्योंकि वो घड़ी कह रही है कि थोड़ी तो मैं पनियारी
1: ना ना
0: जो
1: किसमें सो बिजो भले खावे मन खा दाग बिजो खावे आप रो खून बढ़ावे खून बढ़ोड़ो रहसे तो थोड़े शरीर में वैसे रूह में रोग कौन रहे है
0: ए बात सही
1: ना।
0: रूह में रोग तो नहीं रहना चाहिए उसके अलावा भी अगर जे कदे कोई चपेट में आ जावे तो हमें पहले वाली बात को नहीं रही कि आप थोड़ो भी आलस बिल्कुल नहीं करना तुरंत सलाह भी लेवनी और लू ना भी हल्के में नहीं लेवनी लू भी खतरनाक हुई कई बार मोटो रूप ले ले और हमें तो देखो मना तो लग रही है कि घड़ी री टिक टिक ए बता रही है कि हमें अपन बहनों से इजाजत ले लेनी चाहिए
1: ठीक है।
0: और

0: अगली पणियारे में लाली जी को चीजें और रेवड़ी जरूर बता सो, पर जिति तक थे चावल और आया खींचिया भुजिया जरूर बनाया
1: बनाया
0: मौर्य हाथ जोड़ विनती
1: विनती है तो
0: ठीक है
1: बिल्कुल
0: बहना सुकर सो राम राम
1: राम राम।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम पणिहारी। प्रसारण हो रहा था रेडियो गोल्डन सिटी से। हमारे प्रसारण एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। बने रहिएगा रेडियो गोल्डन सिटी के साथ।

0: in various government departments, says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over the next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉड प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को NEET UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।

0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज 23वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए

विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सदा बहार नगमी कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

हमसे पर्दा है, मरता है जिया क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, पर्दा है जिया क्यों

तेरा हर रंग हमने देखा है, तेरा हर ढंग हमने देखा है, पास आकर भी तुझको देखा है, दूर जाकर भी तुझको देखा है, उसको हर तरह आजमाया है, पाके खोया है खोके पाया है, आखरियों का बयां समझते हैं, धड़कनों की दबा समझते हैं, चूड़ियों की खनक से वाकिफ है, छागलों की चनक से वाकिफ है, नाजो अंदाज़ जानते हैं हम, नाजो अंदाज़ जानते हैं हम, तेरा हर राज़ जानते हैं हम।

0: दिल खाने से फायदा क्या है, ऊंच पाने से फायदा क्या है, उल्टी उल्टी लते संवार के यहाँ, खुशी को और भी निखार के यहाँ, नर्म गालों में बिजलियाँ लेकर, शोक आंखों में तितलियाँ लेकर, आबिदा अब अदा से लहराती, एक दुल्हन के करवा शर्माती, तू नहीं है तो रात सुनी है, इश्क तो गाए ना तो सुनी है, मरने वालों की जिंदगी तो है, मरने वालों की जिंदगी तो है, इस अंधेरे की रोशनी तो है,
1: आज को हमसे पर्दा है दिया, जो हमसे पर्दा है, आज को हमसे पर्दा है, आज को हमसे पर्दा है।

0: हाँ तेरा इंतजार कब से है, हर नजर में करार कब से है, शमर रह के झुंझलाती है, सांस तारों की डूब जाती है, वो अगर मेहरबान हो जाए, ये जमीन आसमान हो जाए, अब तो आ जाके रात जाती है, एक आशिक की बात जाती है, खैर हो तेरी जिंदगानी की, दिल भी देती तू मेहरबानी की,
1: तुझ सा जानू से आज जो हमसे पर्दा है।

0: ताहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी, मोहम्मद रफी बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती है धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा वो हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
3: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी। फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल की। गीतकार है PL संतोषी और संगीतकार N दत्ता।
4: पुरानी कहानी

0: ना
1: ना कोई मारे कोई पीटे को
0: ना कोई खाए मांस पीटे का
1: ना कोई पीवे फूस पीटे का
0: ना कोई रोके सांस पीटे का।

0: लेकर जाऊं।
1: धन्य है मौसी,
0: धन्य है मौसी, धन्य है मौसी। देखो भाई जाती तो हूँ जाने को, लेकिन राजा कहीं तो झपटा, मुझको ही खा जाने को।
2: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
3: हम आएंगे,
1: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
4: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटकार।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमती। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

मधुमति फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और सैक्यू की आवाजों में सुना। आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया। हसी हसी में जालिम, दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया। हसी हसी में जालिम, दिल मेरा।

रिया के कटिया नजरों का पैमाना, ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया में जालिम, दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया में जालिम।

जब आँख मिले शर्माऊं मैं खोए खोए जाऊं, जब आँख मिले शर्माऊं मैं खोए खोए जाऊं, आँखों के कलियां कहां पे जब सामने कुछ खो पाऊं, आँखों के कलियां कहां पे जब सामने कुछ खो पाऊं, सुन मेरे सपनों में दर्द हुआ दीवाना।

हालन पूछो देखा, मैं सबका दिल भी धड़के कुछ हालन पूछो देखा। मैं भी यहाँ तू भी यहाँ, प्यार से जाना है क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया उसकी हंसी में जालिम, दिल मेरा खो गया ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया उसकी हंसी में जालिम, दिल

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की जुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और फिल्म है अदालत।

रंग तलती हलका दमना लुट जाएगा, उतरती अगर फलका।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर है। फिल्म का नाम है चंपाकली।

है गोरी।

मानो ना मानो तुम्हें दिल की कसम है, अपना हमें बनाना सजनिया का है। मचावत चोर कभी ना छोड़ू तोरी, ये पैया गोरी गोरी सजनिया का है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता है, ये कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, विमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता, जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से, मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद पक्षी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पमार, डेनी पमार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाए। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा।

जो दिल की उलझन है सब तुझ पे रोशन है। घायल परवाना हूँ बहशी दीवाना हूँ, घायल परवाना हूँ बहशी दीवाना हूँ। तेरी शौरत सुन सुन के उम्मीदें लाया हूँ तेरे दर पे, मैं तेरे दर पे आया हूँ। कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर

यह गम छूटेगा वरना दम टूटेगा, अब यह गम छूटेगा वरना दम टूटेगा, अब जीना मुश्किल है फरियादे लाया हूँ तेरे दर पे।

0: भर के जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तेरे दर पे आया हूँ।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान के बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और उनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, जिस दिल में एक सपना सा जागा है।

0: बता दूं
1: किस दिन से मैंने तुमको देखा है, किस दिल में एक सपना सा जागा है। इजाजत हो तो सुना दे, इजाजत हो तो सुना।
2: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सूर्य कुल तिलक महाराणा जी दरबार में पधार रहे हैं। सावधान,
2: मेवाड़ाधिपति की जय।
3: आप सब यथा स्थान विराजे, कार्यवाही आरंभ की जाए।
4: जो आज्ञा महाराज।
5: महाराणा की जय।
0: राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
3: आने दिया जाए।
6: महाराणा की जय।
0: राणा हाड़ा जी ने ये पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
3: मंत्री जी,
0: अन्नदाता,
3: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
0: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
3: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
0: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
3: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
0: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने इन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
3: महामंत्री जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
0: महाराज,
3: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
0: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सूखते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं ही नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
3: चूड़ावत जी,
7: महाराणा,
3: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है, इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
7: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
3: हम आपको यह चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
8: जी, महाराज,
3: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें यह संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
0: जी महाराणा।
3: सामंत चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अतिशीघ्र किया जाए।
0: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगे तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरी मुंह दिखला में।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
0: अरे तारा, कहाँ चली गई? सब भाभी को ही घेर कर बैठी है।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ ऐसे, यहाँ यहाँ क्या करना होगा मुझे? ये हमारी कुल देवी है, सौभाग्य और यश की देवी।
2: अच्छा,
0: न वधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
2: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
2: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था। इसके सिवा और मैं मांगी क्या सकती थी? भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
2: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे।
2: हाँ
0: अरे बुलाओ भैया।
2: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
2: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
2: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हरी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं,
0: बस अब खूब मजा आएगा।
2: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है। और वो चित्र किसका है? ओह स्वामी, प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है। आज मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के बारे में कुछ बोल भी नहीं। कौन?
1: स्वागत है।
2: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ जी, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की झलक पर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे हाँ, अब ठीक है। हाँ। देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि वही मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
2: स्वामी, मेरे देवता।
1: सच?
2: मैं तुम्हारी पुजारी।

0: सूचित किया जाता है।
1: तुम सच मुगल
0: बादशाह
1: सुंदर हो।
0: नगर की
1: राजकुमारी
0: बल पूर्वक विवाह करने के लिए अपनी विशाल सेना
1: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही ना हो।
0: नगर के राजा ने
2: स्वामी
0: हमारे महाराणा के
2: पागल पर
0: सहायता की महाराणा के
1: तुम कुछ कहती और मैं सुनता रहूं। मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
2: हूँ।
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान मुक्त हूँ।
2: सुनिए अपनी
1: इधर आओ।
2: छोड़िए
1: प्रिय,
2: छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक टूट पड़ी हो।
2: सुनिए नगाड़ी की ध्वनि, राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
3: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
2: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
3: प्रियतमे मैं
2: प्रियतम
3: मैं
2: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
3: प्रिय जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अठास और संगीत की मधुर लहरी में ये भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएगी।
2: स्वामी ये केवल आपका मोह और वासना है।
3: रानी
2: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
3: रानी
2: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
3: हाँ रानी मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी न हुई थी। क्या करूं?
2: ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
3: रानी ठहरो,
2: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए, मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
3: हूँ। ठहरो रानी,
2: यह हर अंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है, मैं जाती हूँ।
3: रानी ठहरो, रानी सुनो तो।
2: नहीं सावन नहीं, मैं जीते जी अपने आप पर यह कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सती रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंगमहल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी वीरता के केश पुष्पों की सुगंध में मधु सामंत तलवारों की खनखनाहट में भयभीत हो गया। नहीं सामंत नहीं, आप पर एक कलंक का टीका नहीं है।
3: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
2: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामंत की वीरता कायरता के बंदी खाने में बड़ी तरफ है।
3: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा?
2: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके भाल पर रख स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
3: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा, तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ, सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
2: नाना
3: तो तुम्हारा ये रूप यौवन।
2: ऐसा न कहिए प्रियतम, यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए

0: और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा, जय भवानी।
0: जय भवानी, विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए। मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यश और विजय दे।
1: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका। क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ही यौवन रूप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
2: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
0: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
2: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
0: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
2: जो आज्ञा।
0: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: महारानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित होती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तो व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
0: तारा, तारा देखो कोई आ रहा है।
3: महारानी जी, रणसिंह जी आए हैं।
2: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
0: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
2: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
0: रणसिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। इस हाड़चांग की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रणसिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी। ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार। तारा, तारा
3: आई आई। रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
0: हाँ तारा, मेरी प्यारी बच्ची, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना। आज अंतिम बार तेरी सहायता चाहती हूँ। ये क्या कर रही है? धरा धरा, मेरी मांग में सिंदूर भर दे। मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और महावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर। तारा, रानी जी, रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकत, रणसिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ना, ना सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं। तभी ठीक से मांग तो भर दे। ऐसे। दर्पण ला। दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह। कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता बता ना। अरे फिर रोती है ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना कि सामूत की विजय है मान कर सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े करवोटत वक्ष पर ये मेरा शेष रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बहुत विलंब हो रहा है तारा, चलेगा लग बढ़ रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है। मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना और कहना
4: ¡Gracias!

0: Tá. Então, Roque ou Garrigo?
1: Jumensinji, Lidji, Hari Rani ne saman ke liye ye vijay maal bheji hai.
0: Ye kaisi vijay maal hai, jo is tarah thali mein dhaank kar lai ho?
1: Aap, swayam dekh le, aur saman tak shikar pahuncha de.
0: ये क्या? ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा. जाता हूं तारा. अभी तक रण सिंह नहीं आया और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा आ रहा है. उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता. हरी रानी नस नस में बस गई है. क्या करूं? सामन, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
2: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था. कहो, हरी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
0: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है.
2: अच्छा,
0: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे.
2: सच?
0: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा. इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है.
2: वो क्या?
0: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु.
2: हमें सब स्वीकार है पर सेनानी तो दिखाओ.
0: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए.
2: लड़सिंह, ये क्या लाए हो? हरी रानी का भंग शीर, ये क्या किया तुमने लड़सिंह?
0: मैंने नहीं, आपने ही ये किया. रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा. रानी आपकी दुविधा तो पहचान गई और आप पर कोई कलंक ना लगे.
2: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूँ. सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया.
3: हाड़ी रानी तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, नहीं पहचाना. इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बना के गले में पहना दो रण से, मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो. मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना. अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण कट गया है. भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे. साथियों आगे बढ़ो, विजय हमारी है.
0: अच्छा की सेना उल्टे पैर
2: काट रही. सच तुम विजयी हुए?
0: हाँ सावन, सच. मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता, शायद वो फिर अंतभूमि छोड़कर भाग निकला. सावन
2: शत्रु भाग गया. जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए.
0: मैं चाहता हूँ
2: मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
4: मैं जाता हूँ बामन, आप कहाँ जाने जा रहे हैं बामन? धैर्य धैर्य रखो।
2: रानी सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो, रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा
1: जी सामंत,
2: रानी जी कहां है? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
1: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।
3: हाँ, रानी मेरी हाड़ी, रानी मेरी विजय माल।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना। प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूँ और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है
3: जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफी छोटा तरफ से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। तो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर वो उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती, तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था और अपने माता पिता के बारे में?
3: जी जी, तो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे वाह,
3: मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था, मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था। केशर पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने और भी बहुत सारे लोगों के गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन भी था। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहां पे बैठते थे और फिर वो वहां पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए, जानवर उनके खेतों में ना घुसवाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती मैं, आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे और कई दफा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिया, 8-10 हजार रुपए उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
2: अरे वाह वाह।
3: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि गाने के आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है, जिनमें मेरे पिताजी
2: चबूतरे में,
3: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए। सो मैं ये बोलूंगा मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ।

0: तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से, ऐसे जय जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है अगर हम साथ में बोले तो हम बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गाँव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पे पड़ता है, बसारी के आगे है पहरा।
1: ओके,
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर।
1: कितनी क्लास तक वहाँ पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी। उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो लाइक वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक।
1: अरे
0: जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका, टाइटल सॉन्ग था उसका।
1: अच्छा, जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है?
0: उसपे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक भागे होती थी।
1: हाँ।
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे कहाँ ले आए,
1: उपटा लगत उंगरिया, क्या बात है,
0: कहाँ ले आए राजा कुमारिया में,
1: मतलब बुंदेलखंड
0: लाइक कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए। ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूँ और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो मजा आ गया मुझे,
0: बहुत ही मजा, बहुत मजा। तो यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव।
1: हाँ।
0: तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा।
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद।
1: अरे
0: मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक है।
0: उस नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे, छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे, लाइक
1: तो बुंदेली में था ये।
0: हाँ, बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक पहला नाटक था मेरा। तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया, और मैंने अभी आपसे बात भी किया इस तरह का, जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ कि खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई। खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही खजुराहो, 30 किलोमीटर दूरी है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, काफी बड़े एक्टर
1: हैं, पन्ना की
0: है। पन्ना की है। तो वो NSD से पास होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे, हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो अंग्रेज आते हैं, गोरे फाइव-स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उन्होंने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2-2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चल रही है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चल रही है, क्योंकि वहां पे 1 महीने रहना है। तो शिल्प ग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया अश्तक जी ने, इन्हें कहीं देखा है।
1: अरे
0: इन्हें कहीं देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया और इतना अच्छा काम निकल के आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक भी मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने मैं मुझे ये करना है या मैं कहाँ सीखूं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एनएसडी से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी एनएसडी जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके एनएसडी पहुंचना है,
1: तो डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख लिया अभी मुझे पहुंचना है एनएसडी। तो फिर वहां
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी जी,
1: यहाँ एक फिल्मी गाने

0: बिल्कुल वो एक जहन में बसे होते हैं और ये उस दौर की याद लेके
1: जी जी जी हमने बहुत देखा है फिल्म को।
0: वाह
1: बहुत देखा है फिल्म को हम। मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी।
0: क्या
1: जो भी सीडी पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
0: वाह ये गाना सुनते हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक एनएसडी में हैं
1: जी
0: और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए,
1: दिखाए थे
0: और वो एक शिविर लगाते हैं
1: जी।
0: और वहां से आपको एक राह दिखती है,
1: जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है
1: जी।
0: और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहां पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूं, तो अब मुझे तो कोई कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद में दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th 10th क्लास में पढ़ता हूँ, और मैं एनएसडी की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी जिससे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था, मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया, फिर मैं एनएसडी के गेट पे पहुंचा और मैं एनएसडी, मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है, और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक, उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, मैंने कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10 क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊंगा। मैंने बोला कि मैं आऊंगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 26 26 फोन हुआ करता था,
0: हाँ वो छोटा वाला,
1: छोटे वाला फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी।
0: हाँ।
1: तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस रिकॉर्ड कर दो,
1: रिकॉर्ड कर दो, 1 मिनट ही मेरे पास में, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में।
0: हाँ।
1: तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, एक्सेस किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब,
1: और तुम अनुशासित
0: हो। 1 मिनट में सब बोल,
1: सब बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैं कॉलेज में, इस शहर में था
1: छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इप्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको, तो उनसे जुड़ गया। फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सरस्वती सक्सेना का नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ, फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो आपको, कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर ये नाम के एक बंदे, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर है वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलग दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया था, और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को, शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूँ और मेरे घुटने कांप रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बंदे का नंबर जान है सिर्फ, मेरा उसकी शक्ल भी नहीं देखी और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोच रहा हूँ कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फोन उठाएगा?
0: बिल्कुल,
1: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूंगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पुआ हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा हुआ 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फोन बंद हो जाए या आपको फोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा, और फिर एक बंदा
0: रोशनपुरा चौराहे,
1: हाँ, एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छुए, वो नहीं बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो पैर बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, एक घंटा हो गया।
0: पहले हेमंत आया,
1: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने वाने गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगीता सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ, लाल पीली कलर की शर्ट पहने हुए, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उदय रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, एक घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया, चाय आई, हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे बंदा पढ़ ही रहा है, आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे, वो उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर। मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरे को ये ताकत लगा रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखिए इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं आना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं ऐसा कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रियल सिर्फ साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेगी। तो जिस रिपेक्टरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी शामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे, तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार। ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना, और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई, उस महफिल में सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना लूं आपको?
0: जरूर।
1: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लेबुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कैया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबुआने,
0: वाह वाह,
1: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लेबुआने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
0: क्या बात है।
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, उसके दोस्त हैं
0: बिल्कुल,
1: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेला ना जा पाहो उनका आके तिनगाने,
0: वाह वाह,
1: आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने,
0: वाह वाह।
1: आखिरी बंद है कि दद्दा धीरे से मुस्काए ढीले दोई बेला, और नए तंगड़िया बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने गड़गड़िया लेवाई, और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई, कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने मौका मिला जाए।
0: कहते हैं देवेंद्र
1: उस समय ये बंदरगढ़ी कभी गानों में कभी राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे छाप है तो छाप लगा के मैंने पहली कविता लिखी थी मेरी बुंदेली कविता थी और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया चेखव पढ़ना शुरू किया मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया बादल सरकार पढ़ना वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
0: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
1: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है भुजिया बोले ली और रोटी बना के और रोटी में घी लगा के घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था और रोल बना के उसमें नमकीन डाल देता और उसको ऐसे खा देता। खर्च कुछ था ही नहीं
0: बस खाना हो गया
1: और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था तो वॉक करके वहां पे जाता था रिहर्सल करता था टाइम से पहले पहुंचता था तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था ये ड्यूटी थी मेरी रिहर्सल स्पेस साफ करना है चटाइयां बिछानी है डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना और हम तीन लोग जाते थे हम पहले पहुंचते थे हम सब कुछ काम करते थे डायरेक्टर आते थे बैठते थे बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं मेरी भाषा बहुत खराब था एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे वो भुवनेश्वर का नाटक था एब्स्ट्रैक्ट नाटक था और पहला नाटक मुझे करने को मिला मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें एक डायलॉग था ले लो कांच के बीच तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच तो बोलते ले लो नहीं मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो और मैं बोलता था ले लो और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो यार मैं समझ नहीं आता वही तो बोलता हूँ फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे मुझे पता चला कि मेरे वो भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता ग्रुप में पैसे मिलते नहीं तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए और खुले ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ फिर वर्कशॉप में गया वर्कशॉप में का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा मैंने सीखा तो किसी नहीं है मैंने हारमोनियम सीख लिया था पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी जो कि हमारे बीच में नहीं है पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीजों के लिए काफी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है ऐसे ने अवार्डी है वो और मेरे गुरु हैं मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे तो उस नाटक में हम उज्जैन में हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहां पे थे तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही और वो गाना मुझे ही गाना था तो मेरे सामने बना रहे थे क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया एक कविता थी दिखती है आस क्यों पाक पसारे सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया और मैं इसे इंस्पायर इनलाइट हो गया मतलब ओके भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था दिखती है आस क्यों पाखे पसारे सही में है मन क्यों

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात।
0: किए, क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या
0: तो
1: लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना लिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूं अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ
1: सुनेंगे। तो
0: बताइए,
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा
1: ओंकारा का
0: का
1: गाना है।
0: गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: शानदार
0: गाना
1: गाना
0: है।
1: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा, तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ मुंदेली गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले, तुझको किसने रोका है, सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है, और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला चालू
1: हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है,
0: वो
1: तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है, वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया, और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार, तो फिर मुझे पढ़ने का वहां पर मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था, 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था डीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके,
1: तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया,
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, और वही वो,
1: और वो धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा,
0: मिले धुरंधर जी,
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी,
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब परिवार के सदस्य हो, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो दुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहां भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसजी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसजी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया, उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग करता हूँ, रोल भी करता हूँ, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये बहुत
1: मैं बताऊं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था, शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था, तो लोग हंसते थे, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ,
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की, मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके। मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था,
0: शक को साफ बोल रहे हो,
1: हमेशा बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजीव जोशी की बहुत पॉपुलर कविता, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया, जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा वो सही बोला था, शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोलना था, इतने दिन से तुमसे यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके, ओके।
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनर्जी आया, और मैंने बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनर्जी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुज खोटवर सर, और मैंने मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2.5 घंटे के नाटक में 1.5 घंटे कम से कम स्टेज पे, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सबको उसको करना है, मैंने जम पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा हुआ। पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया, और उस समय मुझे सुनने आया कि यार मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियां कौन कहेगा, तो फिर मैंने वहां से अपना रुझान बदला, और मैंने डिजाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया सेकंड ईयर से, आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया और फिर मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ उस जमीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
0: बिल्कुल
1: तुम्हारी एफर्टलेस दिखती है। तो ऐसा करके शुरू हुआ पूरा पूरा।
0: तो फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर की बात की है?
1: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक होते थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
0: बंसी कॉल
1: जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडली खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
0: मुखौटा,
1: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लाजवाब लाइव थिएटर करते थे और वो फार्स कॉमेडी करते थे और कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं।

0: को वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं।
1: तो वहां से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया, तो वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिजाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक, की वहां से एक रेल की पटरी निकलती है और वहां पे एक गार्ड रहता है और वहां पे फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफी गाने ऐसे पॉपुलर हुए, वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे थे, मैंने दे दिया किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास, एनएसजी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड में चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं, और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया,
1: और यहाँ से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे शुरू होता कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बताता कि वहां हर हाल में पहुंचना है, जहां जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो क्योंकि रेडियो बंद था, तो रेडियो पे कोई न्यूज चल रही है, और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये इसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूजिक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़े बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत जोर से प्यार लगा है, जो अभी लगातार हो रहा है।
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: सुनाता हूँ मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी अभी बात आ देता हूँ कि
1: बिल्कुल
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है, और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये, एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती, उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के
1: बदल दी।
0: उस पे एक कहानी है, हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है, एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद है,
1: क्या
0: तो वो क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है, क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहां कहां पहुंचता है, उसी कहानी है। सो गाना है, अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, किसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इनलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट तिगायब, उन होटों में होट तिगायब, हाथ तिगायब, बात

0: थी, गायब दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी।
1: वाह।
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: बढ़िया गाना।
0: जी, जी जी,
1: कैसा रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है, तो जो भी शो होता है, जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं, एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है, तो बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो है, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, एनएमसीसी में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले, और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी,
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब सीरीज,
0: जी जी, स्वानंद दादा है, और अंकुर तिवारी जी ने डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़के को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन, और उससे राखी बनवा दिया। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा,
1: बेचारा
0: वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी खाट से उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने बिल्कुल एक्टिंग नहीं की, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर काम, आशीष विद्यार्थी जी उसमें काम कर रहे हैं, तो काफी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था गाना, उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था। अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है, पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए, बुजुर्गों ने फरमाया है, प्यारे सब मोह माया है, अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड़ सब मोह माया है, काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या,
1: बिल्कुल
0: चाय चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह,
0: पी के कहीं तो भूख में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे, नजरों की बंदूक में फंस गए,
1: क्या सुन,
0: उसके लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने
0: में,
1: और सबसे अच्छी बातें वो होती है जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए,
0: जी जी,
1: तो फिर कभी मिलेंगे और आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती, मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं,
1: हाँ।
0: कर दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में,
1: बिल्कुल,
0: और मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको, और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने में मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं काफी कहूँ जैसे गाने मैंने सुन, बड़ा हुआ हूँ मैं, मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ कि मैंने थोड़ा म्यूजिक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है, और दूसरा मैं शहर भी रहा हूं तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूं, तो मेरे लिए काम कर जाता है, और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है कि वो गाना नहीं सुनता जब जब प्यार पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके साथ बैठा हुआ था, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके, और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे

0: नरेंद्र दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: यूपी वाला ठुमका लगाओ, यूपी वाला ठुमका लगाओ, के हीरो जैसे नाच के दिखाओ।

0: संगे संग तुझे भी नचाओगे रोज़ नाच के दिखाओ
1: संगे संग तुझे भी नचाओगे रोज़ नाच के दिखाओ
0: अरे युवती वाला तुम का लगाओगे रोज़ नाच

0: दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली,
1: बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली,
0: होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली,
1: होने लगी देखो मेरी चाल मत वाली।
2: एंटी वाला,
0: अरे एंटी वाला लच का बताओ के रोज नाच के दिखाओ।
1: एंटी वाला।

0: जैसे नाच के दिखाऊं,
1: संग संग तुझे भी नचाऊं, देखो जैसे नाच के दिखाऊं।
2: आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: अपना बॉम्बे टॉकीज, टॉकिंग है, रोलिंग है, अपना बॉम्बे टॉकीज। डुपर है, अपना

यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है। एफएम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

और आबादी वाले देश भारत के लिए प्रशासन की गुणवत्ता सिविल सेवाओं के अहम कंधों पर निर्भर करती है। एक ऐसी सिविल सेवा जो आज के दौर की और आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो, वो लोकतांत्रिक और प्रभावी प्रशासन के लिए समय की मांग है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए मिशन कर्मयोगी भारत की सरकारी कर्मचारियों का आधुनिकीकरण करता है और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सीखने के औजार, नेतृत्व क्षमता के हुनर और बहुआयामी विशेषज्ञता से समर्थ कराता है। तो साथियों, अब आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। दोस्तों, सिविल सेवाओं के नियमों पर आधारित होने की बजाय भूमिकाओं पर आधारित बनाने और नियमित रूप से डेटा पर आधारित प्रशिक्षण के लिए और प्रदर्शन का समय समय पर विश्लेषण करने के लिए भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम शुरू किया है। इस मिशन में काबिलियत पर आधारित क्षमता निर्माण का तरीका अपनाया जा रहा है। इस योजना के तहत क्षमता के स्तर और कमियों का मूल्यांकन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया के लिए डेटा पर आधारित मानव संसाधन के रणनीतिक प्रबंधन का भी उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी का मकसद भविष्य के लिए तैयार एक ऐसी सिविल सेवा का निर्माण करना है जिसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए समुचित दृष्टिकोण, कौशल, ज्ञान और विजन मौजूद हो। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी पहले से रणनीतिक रूप से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये मिशन सार्वजनिक सेवा में कर्मयोगी का भाव जगाने का लक्ष्य रखता है, जहां निजी और सामाजिक विकास के लिए कर्तव्य और राष्ट्र सेवा के भाव को माध्यम बनाया जाएगा। साथियों, ये मिशन उस सिविल सेवा कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी से हुई शुरुआत को आगे बढ़ाता है जिसको 2014 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मिलकर जारी किया था। इसकी चार प्रमुख थीम मूल्य, नैतिकता, समता और कुशलता है और 25 अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष दृष्टिकोण है। मिशन कर्मयोगी पहले से रणनीतिक रूप से अलग है, क्योंकि ये लोगों में यानी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें कर्मयोगी का भाव जगाता है। साथियों, ये भारत के संविधान में दर्ज बुनियादी कर्तव्यों में से एक है। मिशन कर्मयोगी के केंद्र में एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण जिसे कि iGOT प्लेटफॉर्म है, सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सबके लिए लोकतांत्रिक बनाने और नियमित रूप से सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिहाज से एक महत्वाकांक्षी पहल है। 21वीं सदी में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। iGOT पर लगभग 75 लाख सरकारी कर्मचारी लगभग 2000 कोर्स सीख रहे हैं, खास तौर से तेजी से उभर रहे और लगातार परिवर्तित हो रही दुनिया में ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव है जिसमें लोग एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसका इंटरफेस इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत आसान है, जो प्रभावी तरीके से सीखने का बिना किसी खलल वाला अनुभव प्रदान करता है। तो साथियों, इस एप्लीकेशन और इस मिशन के बारे में और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अभी लेते हैं एक अल्पविराम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आई गॉट में अहम योगदान डिजिटल प्रशासन के क्षमता निर्माण की वो पहले भी दे रही है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत

नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा चलाए जा रहे हैं। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन तमाम प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करके सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन के साथ साथ निजी अनुभव वाले प्रशिक्षण के अनुभव उपलब्ध कराता है, जो जोड़ने और आपसी संवाद का अवसर देने वाले हैं। इस प्रशिक्षण में वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी भारतीय संदर्भों में सिखाया जाता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया और अनुकूल हो जाती है, ताकि ठोस कदम उठाए जा सके। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण आयोग सिविल सेवा के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों और क्षमता निर्माण संगठनों के साथ सहयोग करता है। सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए देश के सारे अहम मूलभूत ढांचों को शामिल करके इस कार्यक्रम ने सीखने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, सहज, भूमिका पर आधारित और काबिलियत पर केंद्रित बनाया है, जो प्रेरक और ऊर्जावान बनाने का काम करता है। सरकारी कर्मचारियों को भूमिका पर आधारित काबिलियत की रूपरेखा के तहत ऑनलाइन और व्यक्तिगत प्रशिक्षण देने का ये समर्पित प्रयास बिल्कुल सही दिशा में उठाया गया कदम है। आगे का रास्ता ये सुनिश्चित करना है कि इस रूपरेखा के तहत विकास का जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, उससे कोई भी अधिकारी पीछे न छूट जाए। तो साथियों, इस पर यह चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। अभी आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म बादशाह से गीत, आवाज थी अभिजीत और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत था अनु मलिक का। साथियों ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे मिशन कर्मयोगी के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी कर्मचारियों को भूमिका पर आधारित काबिलियत की रूपरेखा के तहत ऑनलाइन और व्यक्तिगत प्रशिक्षण देने का ये प्रयास बिल्कुल ही सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। ये आगे का जो हमारा रास्ता है उसको सुनिश्चित करता है और इस रूपरेखा के तहत विकास का जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है उससे यही कोशिश की गई है कि कोई भी अधिकारी पीछे ना छूटे। इसमें साथियों पहला जो दृष्टिकोण लिया गया है वो है क्षमता निर्माण का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा टेक्नोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, जिसमें पूरी निर्भरता तकनीकी कौशल और ऑनलाइन मॉड्यूलों पर हो जाए। वैसे तो आई गॉट एक परिवर्तनकारी प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये सीखने के व्यक्तिगत संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर आधारित उन अवसरों की जगह नहीं ले सकता जो अलग अलग तरह के तजुर्बे और माहौल उपलब्ध कराते हैं। दूसरा दोस्तों ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि शुरुआती स्तर के अधिकारियों और निचले स्तर की पूरी अफसरशाही, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के ज्यादातर अधिकारी आ जाते हैं, उन्हें प्रभावी तरीके से प्रशिक्षण दिया जा सके। जनता के साथ संपर्क का वो पहला कदम है और इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से नीतियों को लागू किया जाता है। सार्वजनिक प्रशासन का पूरा ढांचा अधिकार

कर्मचारियों के नैतिक बर्ताव, कुशल प्रदर्शन और फुर्तीली मानसिकता पर निर्भर करता है। इसीलिए मिशन कर्मयोगी और भारत के विकास के सफर की सफलता के लिए ये बेहद अहम और भागीदारी है। दोस्तों, मिशन कर्मयोगी में भारत के प्रशासनिक परिणामों को तब्दील करने, जनता का भरोसा उठाने की काफ़ी संभावना है। इससे ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी मशीनरी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ कदम ताल मिलाकर चल सके। कर्मयोगी भारत के प्रशासनिक भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है, जिससे सरकारी सेवाओं में इनोवेशन, कुशलता और जनता की मांग पूरी करने की पहल को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन, अनुकूलन और सीखने और योगदान देने के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत होगी। भारत एक सशक्त, सक्षम और फुर्तीली सिविल सेवा को विकसित करने की दिशा में प्रगति कर रहा है और इसका मकसद नैतिक बल और निजी और सामाजिक तौर पर बेहतरी प्रदर्शन वाली संस्कृति की मानसिकता को मजबूत करना है। कई मामलों में गहराई से समझ रखने वाले सरकारी कर्मचारी बनकर जिनका मूल्य जनता की सेवा को प्राथमिकता देना है, ऐसे सरकारी कर्मचारी आगे चलकर नैतिक, प्रक्रियाशील और निर्बाध सेवा देने वाली सरकारी सेवा में तब्दील हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये था मिशन कर्मयोगी। अभी वक्त हो चला है एक अल्प विराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। कलम

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां हर व्यक्ति के जीवन में, विशेषकर बच्चों के जीवन में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ग्रीष्म ऋतु साल की सबसे गर्म ऋतु होती है और बच्चे इसका खूब आनंद लेते हैं। ये उनके लिए बहुत ही रोचक और मनोरंजक मौसम होता है, क्योंकि उन्हें अपने पसंदीदा फल और आइसक्रीम खाने का मौका मिलता है। साथ ही गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल बंद रहने का भी वे भरपूर आनंद उठाते हैं। साथियों, गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और उन्हें ढेर सारी खुशियां देती है। इन छुट्टियों के दौरान बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें कर सकते हैं, अपने माता पिता, भाई बहनों और परिवार के साथ समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ छात्रों के जीवन का सबसे खुशनुमा समय होता है, क्योंकि उन्हें कुछ समय के लिए स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। साथ ही गर्मी से राहत दिलाने के अलावा गर्मी की छुट्टियों के और भी कई फायदे हैं। परीक्षाओं के बाद छात्र अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं और पढ़ाई में भी उनकी रुचि कम हो जाती है। यह अवकाश उन्हें आराम करने और पढ़ाई के लंबे अंतराल के बाद अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का एक समय होता है। दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां बच्चों और बड़ों सभी के लिए कुछ नया सीखने का समय होता है। लोग अपनी छुट्टियां अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कुछ परिवार के साथ पिकनिक का आनंद लेते हैं तो कुछ विदेश यात्रा करते हैं, जबकि कुछ लोग घर पर ही आराम करते हैं और परिवार के साथ मौज मस्ती करते हैं। इन छुट्टियों के दौरान कई बच्चे बैडमिंटन या फुटबॉल जैसा खेल खेलना पसंद करते हैं, तो कई अक्सर खुले मैदानों में क्रिकेट का आनंद लेते हैं। गर्मी के मौसम में मौसमी फल भी आते हैं, जिनका आनंद केवल इसी समय लिया जा सकता है। ताजे फल खाना और फलों का रस पीना छुट्टियों का आनंद बढ़ा देता है। शरीर को तरोताजा रखने में भी ये मदद करता है। दोस्तों, अधिकांश लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियों की योजना पहले से ही बना लेते हैं। खासकर बच्चे छुट्टियां शुरू होने से महीनों पहले ही रोमांचक योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। गर्मियों की छुट्टियां

सभी के लिए बड़ी राहत देती है और वे इसे अपने अपने तरीके से यादगार बनाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन छुट्टियों में जब उन्हें अपने स्कूल से ब्रेक मिल जाता है तो उन्हें व्यस्त रखना आसान नहीं होता, जिसमें कि आजकल जो मोबाइल देखने का जो चलन बच्चों में बढ़ गया है, उसके बाद तो उन्हें दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है। तो साथियों, कैसे इन छुट्टियों का अपन सदुपयोग कर सकते हैं और बच्चों को क्या क्या हम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, उसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्फिराम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, गर्मी की इस छुट्टियों में बच्चों को आप आर्ट्स, क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, स्विमिंग आदि कई स्किल बेस्ड शॉर्ट कोर्स के लिए इनरोल करवा सकते हैं। इससे बच्चों का टाइम पास भी होगा और वे नई स्किल्स भी सीखेंगे। तो दोस्तों, उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में अभी समर वैकेशन हो चुका है और इन दिनों नौतपा भी चल रहा है। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलकर खेलने कूदने के बजाय बच्चे घर पर रहकर ही स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, या फिर कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो भी समर वैकेशंस के कोर्स करवाते हैं। कुछ स्कूलों की तरफ से भी समर वैकेशन सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई डांस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, म्यूजिक आदि की क्लासेस चल रही हो तो आप अपने बच्चे को वहां पर भेजकर इन छुट्टियों का फायदा ले सकते हैं। साथियों, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अगर बच्चे को ड्राइंग, पेंटिंग का शौक है तो इस समर वैकेशन में उनकी इसी स्किल को आप बेहतर बना सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट से जुड़े कई कोर्स होते हैं जिससे बच्चे न सिर्फ बिजी रहते हैं बल्कि अपनी पसंद के काम एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। इस दौरान वे जो भी बनाएं आप उसे संभाल कर रख सकते हैं। अगर आपके पास हम उम्र बच्चों का ग्रुप हो तो किसी घर में भी एक्टिविटीज़ को करवा जा सकती है। ग्रुप एक्टिविटीज़ से बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है और अगर आपके पास भी वक्त हो तो आप भी उनके साथ इसमें शामिल हो सकते हैं। एक छोटा सा कॉम्पिटिशन भी आप बच्चों के बीच में करवा सकते हैं जिससे कि बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर उस काम को करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके बच्चों को डांस का शौक है क्योंकि ऐसी छुट्टियों में बच्चों को फिट रखना भी जरूरी होता है। एक तरफ तो स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बाहर जाना अलाउ नहीं होता, तो ऐसे में बच्चे सुबह देर से भी उठते हैं और दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं तो उनकी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप के आसपास कोई डांस क्लासेज है और अगर आपका बच्चा डांस में रुचि रखता है तो आप उसे वहाँ पर भी भेज सकते हैं। ऐसे भी कई संस्थान हैं जो शॉर्ट टर्म डांस प्रैक्टिस करवाते हैं और उसका एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो आप अपने बच्चों को वहाँ पर डांस क्लासेस के लिए भेज सकते हैं। इससे न सिर्फ बच्चा बिजी रहेगा, उसकी शारीरिक एक्टिविटी भी होती रहेगी और वो मोबाइल से भी कुछ समय के लिए दूर रहेगा। तो साथियों, ये जो शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ये आप उनको करवा सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट अगर डांस में है तो ये एक ऐसा फॉर्म है जो बच्चे को फिट भी रखता है, उसकी शारीरिक एक्टिविटी भी बनाए रखता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे छुट्टियों में भूख नहीं लगती है उनको, यानी कि वो खाना नहीं खाते हैं क्योंकि दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने से उनका जो पाचन तंत्र है उस पर भी फर्क पड़ता है। तो अगर बच्चे डांस करते हैं तो उनकी शारीरिक एक्टिविटी होती है, पसीना बहता है तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को डांस क्लास में भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो साथियों, इसके अलावा भी

0: भूला जाए।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और कविता की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम था बादल। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था अनु मलिक का। साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इन गर्मी की छुट्टियों में आप अपने बच्चों को कैसे व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें किस प्रकार की हॉबी क्लासेस में भेज सकते हैं। साथियों, अगर आपके बच्चे छोटे हैं यानी 3 से 4 साल के बच्चों हैं और उन्हें अगर आप किसी एक्टिविटी क्लास में इनरोल नहीं करवाना चाहते हैं तो उनके लिए आप घर पर ही एजुकेशनल गेम्स ला सकते हैं। आजकल बिल्डिंग ब्लॉक्स में कई वैरायटी के गेम्स आते हैं, बच्चे उनसे घर पर बिल्डिंग बॉक्स जैसी कई चीज़ें बना सकते हैं। इनके अलावा पजल गेम भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप चाहें तो मैप्स पजल, अल्फाबेट पजल, नंबर्स पजल या फिर अन्य कई तरह के एजुकेशनल पजल्स के जरिए बच्चों को बिजी रख सकते हैं। इससे उसे खेल खेल में नई जानकारी मिल जाएगी और बच्चे को इसमें खूब मजा भी आएगा क्योंकि एजुकेशनल गेम्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते। तो आप ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके बच्चे को लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, अगर वो उसकी सीखने की जो क्षमता है, जो पकड़ है लैंग्वेज के ऊपर वो अच्छी है, तो आप उसे इन छुट्टियों में कोई एक विदेशी लैंग्वेज का कोर्स भी करवा सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में आज हिंदी और इंग्लिश तो चलती है लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई विदेशी भाषा भी सिखाई जाती है। तो स्टूडेंट्स इन समर वैकेशंस में 2 महीने में अपनी उस स्किल्स को भी इन्हेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कर्सिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं और आप चाहें तो बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी तैयार करवा सकते हैं। तो साथियों, ये कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो आप इन समर वैकेशंस में अपने बच्चों को करवा सकते हैं ताकि वे बच्चे स्क्रीन यानी मोबाइल स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन से दूर रहें और उनकी जो शारीरिक एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी बनी रहे। तो और उनका इस गर्मी की छुट्टियों में जो समय है वो भी बहुत ही आनंदपूर्वक और यादगार बीते, तो उसके लिए ये छोटे से सुझाव हमारी तरफ से आपके लिए थे। आप इनमें से कोई भी कोर्स में अपने बच्चे को एडमिशन दिलाकर इन छुट्टियों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो साथियों, अभी वक्त चला है एक ब्रेक का और उसके बाद कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, प्रधानमंत्री का अल्पसंख्यकों के लिए नया 15 सूत्री कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जो कि सच्चर समिति रिपोर्ट की रिपोर्टों के जवाब में है। साथियों, 15 सूत्री योजना जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई है, उसमें एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और मुफ्त शिक्षा जैसी सेवाएँ प्रदान करके उनका विकास करना है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा तक पहुँच में सुधार भी इसी योजना का एक सूत्र है, जिनमें गांवों और पिछड़े इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी जहां पर अधिक है, वहां सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना और इसी तरह की अन्य सरकारी योजनाओं को लागू करना है। उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन जुटाने का भी काम इस योजना में किया गया है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक शैक्षिक अवसंरचना और संसाधन उपलब्ध कराना भी इसका एक उद्देश्य है। अल्पसंख्यक समूहों के योग्य छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियां देने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम कर रहा है। गरीबों के लिए स्वरोजगार और मजदूरी पर आधारित रोजगार, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना से अल्पसंख्यकों के लिए धनराशि अलग रखी गई है। कौशल संवर्धन के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए दिया जा रहा है, जिसमें नए ITI स्थापित करके और कुछ ITI को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में उन्नत करके उन्हें इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण सहायता राशि भी सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है। राज्य और केंद्र सरकार की सेवा भर्ती में भी उन्हें स्थान दिया गया है। इंदिरा आवास योजना में अल्पसंख्यकों को उचित हिस्सा दिया जा रहा है। साथ ही अल्पसंख्यक आबादी वाली झुग्गी झोपड़ियों में सुधार, एकीकृत आवास और झुग्गी विकास कार्यक्रम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को भी लागू किया जा रहा है। सांप्रदायिक घटनाओं से बचाव के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। साथ ही सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्निवास भी इसके अंतर्गत किया जाना है। तो साथियों, सरकार द्वारा ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के विकास के लिए शुरू की गई है। दोस्तों, अभी वक्त तो चला है अल्पविराम का और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों आइए आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था बेवफा सनम। गीत के बोल लिखे थे योगेश ने और संगीत था निखिल विनय का। साथियों, कोई भी चीज अच्छी या बुरी किस प्रकार होती है ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यानी किसी भी चीज का उपयोग ही उसका अच्छा या बुरा निर्धारित करता है, और उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों,

हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का चलन जोरों पर है। कुछ लोग इसे अच्छा बताते हैं तो कुछ बुरा। बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के कई सारे अलग अलग माध्यमों पर सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद लोग, खास करके युवा, जहां एक और शिक्षा, खेल, मनोरंजन और जीवन की चुनौतियों से मुकाबिल होने के मंत्र साझा करते हैं, तो वहीं कुछ भटके हुए लोग नकारात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। एक वर्ग मानता है कि सोशल मीडिया का सदुपयोग कम हो रहा है और दुरुपयोग ज्यादा। इन साइट्स की चर्चा इनके दुरुपयोग को लेकर हमेशा होती रहती है। साथियों, एक जमाना था जब लोगों के पास अपनी बात कहने के लिए रेडियो, टीवी या समाचार पत्र ही माध्यम बनते थे। स्वाभाविक है कि हर किसी की पहुंच इन माध्यमों तक नहीं हो पाती थी, लेकिन आज अपनी बात, अपने विचार व्यक्त करने के लिए लोगों के पास सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बनकर प्रस्तुत हुआ है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात को बिना किसी टोक टोक के कह सकते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि सूचनाएं आदान प्रदान करना, मनोरंजन करना या फिर शिक्षित करना भी इसी के अंतर्गत आता है। तो साथियों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल चाहता से गीत, आवाज थी शंकर महादेवन की। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया के बारे में। साथियों, सोशल मीडिया जहां सकारात्मक भूमिका अदा करता है, वहीं कुछ लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं। सोशल मीडिया का गलत तरीके से उपयोग कर ऐसे लोग दुर्भावनाएं फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक और नकारात्मक जानकारी साझा करते हैं, जिससे कि जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार तो बात इतनी बढ़ भी जाती है कि सरकार को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने पर सख्त रुख अपनाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार सोशल मीडिया के भी दो पक्ष हैं, जो कि एक सकारात्मक पक्ष है और एक नकारात्मक। सकारात्मक पक्ष अगर हम देखें तो ये बहुत तेज गति से होने वाला संचार का माध्यम है। यहाँ पर सरलता से समाचार हमें मिल सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो या अशिक्षित। यहाँ किसी प्रकार से कोई व्यक्ति किसी भी कंटेंट का मालिक नहीं होता, और फोटो, वीडियो, सूचना या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स को आदि सभी को आसानी से शेयर किया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर हम इसके नकारात्मक प्रभाव को देखें तो ये बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो भ्रामक होती है या फिर जो सत्य नहीं होती है, वो भी यहाँ पर बहुत जल्दी से फैल जाती है। किसी भी जानकारी को या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भी यहाँ पर पेश किया जाता है। कुछ उकसाने वाली जानकारी भी स्वरूप बदल कर वहाँ पर डाल दी जाती है और लोग उसको देख के भ्रमित हो जाते हैं। कई बार किसी फोटो या वीडियो को एडिट करके भी भ्रम फैलाया जा सकता है, जिससे कि सामाजिक सौहार्द का जो हमारा माहौल है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया का उपयोग जब भी करें, बहुत ही सोच समझ कर करें, सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि ये जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो साथियों, इसी के साथ अभी आपको फिर से ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं अगला गीत।

0: उसमें सारे हैं और जाने कितनी गहराई
1: बहका मैं बहका वो बहकी हवा सी आई एक ही नजर में सब मंजर।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गजनी से गीत, आवाज थी कार्तिक की। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत था AR रहमान का। तो दोस्तों, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपने दोस्त क्षितिज को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:05 पर आप सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

6:30 सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम जयपुर कहने से प्रसारित करें।

साढ़े सात बजे सुनिए राजस्थानी लोक संगीत। आठ बजे हम चलेंगे गीत संगीत की ओर। साढ़े आठ बजे सुगम संगीत। आठ बजकर 45 मिनट पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज एट नाइट दिल्ली केंद्र से। सवा 9 बजे सुनेंगे पुराने फिल्मी गीत। साढ़े 9 बजे विज्ञान भारती दिल्ली केंद्र से। दस बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

ये थे आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम बोल रहे हैं रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर से। आइए सुनते हैं रामचरित मानस गाना।

एक बार माता कौशल्या ने शिशु को स्नान करा पालने में सुला दिया। जब स्वयं स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई में पहुंची तो वहां राम को भोजन करते पाया। चकित हुई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें पालने में पढ़ाया था। दौड़कर पालने के पास पहुंची तो पुत्र को वहां सोया देखा। उसी क्षण उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान आदि अद्भुत दृश्य देखकर, जिनके बारे में कभी सुना भी न था, माता को आश्चर्यचकित तथा डरी हुई देखकर श्री राम ने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया। माता ने परम ब्रह्म का वो रूप देख उनकी स्तुति करने में भी अपने को असमर्थ पाया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गाना। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर एफएम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

समस्त कल्याण गुणा विराम सीता मुखाम्बरो चंचरी कर।

जय सियाराम।

तुमरे आस लगाए, जो पे तुमरे आस लगाए बने उसे के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं समाचार। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी में प्रसारित होंगे, जिसे हम जयपुर केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि

0: पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी रेल सेवाएं देंगे। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्त युवाओं से राष्ट्र निर्माण में पूरे मन से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो, इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है। क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है, ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है। इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित

0: भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण आवास स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और ये अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। ये परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडीवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत, कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णोदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज दो प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएं जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों स्वैच्छिक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉकड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और RAC धौलपुर 6 बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी FIR और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के CMHO डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। CMHO ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर

0: सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनता री जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेज सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो जावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश और गर्मियों थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों ने जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगियां माथे भरोसो जतायो है और इनने मजबूत बनावन री जिम्मेदारी कर्म योगियां री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनवारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा के देशां सागे साझेदारी कर रियो है जिन रो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिरावनो है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बत्तों बत्तो इस्तेमाल करन शुरू कहो। आखा देश माए 47 ठोड़ा रोजगार मेला लगाई चिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठन माए नौकरी लगन रा कागजात सौंपी चिया। प्रदेश माए जयपुर जोधपुर बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात दिया चिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर माए राखी जिया रोजगार मेला माए शामिल थिया। ये मौके श्री वैष्णव नवी नौकरी लागण वालाओं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम री सोच काम करण और देश बनावन रा काम माए पूरा मन योगदान देवन री अरज कीनी। वह कहो कि रेलवे माए 1,60,000 बत्ता ओहदा माथे भर्ती रो काम चाल रियो है जिन सारू 4 करोड़ बत्ता उम्मीदवार भाग आजमा रिया है। जोधपुर माए राखी जा रोजगार मेला माए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोटियाराओ सरकारी नौकरी ने देश री सेवा रो जरियो मानता थका हर पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पोगावण री भावनाओ काम करण बाबत कहो।
3: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है। क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है। इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता।
1: अजमेर माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 258 और बीकानेर माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 281 उम्मीदवार ने नौकरी लगने का कागजात सौंपिया। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड राज्य रा दांडेवाला फील्ड माए नुआ गैस भंडार रोप

0: तो लगायो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि करीब 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन री रेट प्राकृतिक गैस निकलबाऊ देशी ऊर्जा उत्पादन मजबूत बनायला। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहो है कि देश में तेल गैस री कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल री पूर्ति स्थिर है। कंपनी रे मुजब 1-22 मई बीच IOCL रा पेट्रोल री बिक्री माए 14% और डीजल री बिक्री माए करीब 18% री बढ़ोतरी हुई। इन बीच तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल रा मोल माए और बढ़ोतरी करती नहीं है। ध्यान जोग है कि लाडला 10 दिन माए तेल रा मोल माए तीजी दफा बढ़ोतरी करी जी है। लाडला कुछ दिन माए करीब 5 रुपया प्रति लीटर री बढ़ोतरी फी है। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 रवारा माए जनतारी राय सारू मसौदा नियम जारी कीना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब कोई जनो हितधारक संगठन या संस्था 21 जून 2026 ताई मसौदा नियमों जुड़ी आपत्तियां या सुझाव दे सके है। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल जूना मनरेगा रिथौड़ लाइचियो है। नुआ कानून रातेत 1 साल माए 100 दिन री मजूरी री कानूनी गारंटी न बधार 125 दिन करण रो प्रस्ताव है। विकसित भारत जी राम जी कानून 1 जुलाई सगला राज्यों और केंद्र राज वाला प्रदेशा माए लागू भेजा वेला। है समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए सोमवार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू करियो जावेला। 5 जून ताई चलन वाला ई अभियान रे दौरान पानी बचावण जुड़िया काम करिया जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई अभियान री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव अहलकारा ने पानी बचावण री मुहिम जनता ने जोड़बा सारू कहो। ई अभियान री तैयारियां रातेत आज सवाई माधोपुर रा जिला कलेक्टर कानाराम ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग रा अहलकारा री मीटिंग लीनी और जरूरी हुक्म दीना। प्रदेश माए जैव विविधता और पर्यावरण ने बचावण सारू विलायती बबूल ने हटाया जावेला। इस सारू पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान योजना बनार काम करण सारू कहो। श्री दिलावर बबूल री लकड़ी कोयलो बनावण री योजना बनावण बाबत ही हुक्म दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 21 जून ने उजू ली जावण वाली नीट 2026 परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लेवण सारू आज अहलकारा सागर मीटिंग कीनी। वे परीक्षा ने निष्पक्ष साफ और सुरक्षित तरीकों करावण सारू संबंधित महकमा और प्रशासन ने मिलर काम करण बाबत कहो। मुख्य सचिव गड़बड़ी री शंका वाला परीक्षा केंद्र और जिला माए खास निगरानी राखण और जरूरी तादाद माए पुलिस रा जवान तैनात करण बाबत ही कहो। आ परीक्षा राज्य माए 611 परीक्षा केंद्र माथ है दोपहर 2:00 से 5:00 ताई ली जावेला। नीट री ई परीक्षा माए 2,00,000 विद्यार्थियों रे शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवल सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे सरहदी जिला माए हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावण रा हुक्म दीना। डीग माए महिलावां और टाबरियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कां बाजारां और कोचिंग सेंटर कने खास निगरानी रख रही है। SP कांबले शरण गोपीनाथ बतायो कि लड़कियां ने परेशान करण वाला रे खिलाफ ऑपरेशन डिकॉय रातेत महिला पुलिस सादा कपड़ा पहर कार्रवाई कर रही है। वे बतायो कि BNSS री धारा 170 रातेत बिना वारंट गिरफ्तारियां ही करी जा रही है।
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलियम जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930, इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना, साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके उनको देना, ये भी काम उनके द्वारा किया जाता है। राजकोट पे सिटीजन ऐप है, जैसे लगभग हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकोट एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलियम टीम ले रही है और उसको पूरा भी कर रही है।
0: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुद री हिफाजत री सिखावन देवन कॉलेज जाती वगत वा बत्ती हिफाजत महसूस करे है।
2: यहाँ पर कालिका यूनिट है वो हमको गाइड करती है कि हमको जैसे घर से बाहर निकल देते हैं या जो कमेंट बाजी करते हैं छेड़खानी करते हैं उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है, उसके उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है राजकोट ऐप, उसके थ्रू हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090 जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
0: अरे बे मौसम प्रदेश का उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हो गर्मियों थोड़ी साता मिली। दोपहर पाछे सवाई माधोपुर जयपुर टोंक दौसा करौली भरतपुर कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चाली, कठे कठे छाटो छिड़को भी हो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई। दूजी कानी राज्य रा आतूणी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वा रा आसार है, जबकि कई थोड़ा लू बाजन री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई दीवार ने विचार बतावेला। आ ये कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ये मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले राव सा 1800-117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनता री जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो जावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश हो गर्मियों थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वा रा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: यह रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा।

0: पंजीकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: किसान वाणी सुन्न वाला सगळा भाई ना विनीता भाई और
3: लालजी भाई रा घना घना राम राम। जो किसान भाइयों के भी आना चल रही है पर गर्मी रो मौसम और गर्मी भी अड़ी पड़ रही है कि भाई अपन जो वहाँ पर कौम है वो अपन पर टाइम अनुसार करना है। मतलब सुबह जल्दी कौम खेती बाड़ी करना है और कोई आवश्यक काम हो वो भी अपन जल्दी करना है। और जिसके हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से तो अपन सुबह सुबह जल्दी कौम करने के बाद सोमरी टाइम अपन दूसरा काम करना है। बाकी दोपहर 12 बजे से लगाए के 5 बजे तक तो घर से बाहर निकलने की जरूरत होगी। और उसके साथ साथ जब आप घर से आओ देखो काम तो अपन करना भी है और गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो काम रुके भी कोनी। तो जब भी ये मौसम है जब भी आप घर से बाहर निकलो तो एक तो अपन ढीला ढाला कपड़ा पहन निकलना है
2: बिल्कुल।
3: और आँखियों में चश्मा हुए माथे में जो ग्रामीण परिवेश में फेटा पहरी कर जो फेटो हो या टोपी हो या आप कह सको कि भी एक रुमाल हो तो या गमछो हो तो वो लिए निकलना है। और जब भी घर से बाहर निकलो तो भूखे पेट तो निकलना होने
2: सही तो।
3: तो जब भी निकलो तो कुछ खाए पी निकलो और पानी की बोतल हो या छाछ हो खाट जगह ना पो वही इमली पानी हो नींबू पानी हो पी पी वाई निकलना है। और दूसरों अगर घर से बाहर निकल गया हूँ तो थोड़ी रेस्ट वास्ते आपको कोई भी नियम पेड़ छाँव में बैठो या कोई ऐसी जगह ठंडी जगह उधर भी बैठना चाहिए। और बाकी बात हुई यहाँ पर कृषि री देखो कि भी आप एक समय हो तो जब आप ये क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है
2: बिल्कुल।
3: पानी तो वो नहीं सारे किसान भाई जो कभी बरसात में थे खेती बाड़ी चलती थी वो मथे चलता था। पच्छे ये तो आप हरित क्रांति का दौर चलियो और आप इंदिरा गांधी नहर आई तो इंदिरा गांधी नहर आने से आप आस पास क्षेत्र कृषिमय हो गयो। और अपर जितना भी किसान भाई है उन्हें मुरबा आवंटन है और मुरबा आवंटन से वो आसपास जो को जमीन होती वो पौनी पुकन से वो तो खेती बाड़ी चालू होगी। और उसके साथ साथ अपरे ये क्षेत्र में ट्यूबवेल रहा भी काम चालू हो गया जिसके सु भी जिसके कहने आप जमीन होती हूँ ट्यूबवेल लगा के भी वो खेती बाड़ी चालू कर दी। तो हमें स्थिति हो गई कि भाई पुरानी जो को अपर खेती बाड़ी होती और हमारी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। और दूसरों साथ साथ सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई किसानों ने जमीन से लेके मतलब बुआई से लेके लास्ट फसल बेचान तक इनकी किसान भाइयों योजनाओं में लाभ भी मिल रहा है। सरकार हमारी पूरी पूरी मदद भी कर रही है। और दूसरों वैज्ञानिक पद्धति आ गया और वैज्ञानिक पद्धति आने से कृषि में अपना नवाचार हो गया। जब कृषि में जब नवाचार हो गया तो अपनी कृषि जो होती वो वैज्ञानिक तरीके से होने लगी। तो क्यों मतलब यही है कि भाई जब आप कृषि में नवाचार कराएं फिर नवाचार में हो क्योंकि जब आप पहले खेती बाड़ी पशुओं से करता था मतलब बैल होता या ऊँट होता या जो कोई आपका साधन होता उस करता था वो साधन परिवर्तन हो गया वो आ गया ट्रैक्टर में। जब ट्रैक्टर में जब आप खेती बाड़ी चालू हो गई तो आप खेती बाड़ी जल्दी होने लगी आप मेहनत कम लगने लगी और आप कम जल्दी होने लगी हो। उसके बाद आप कृषि यंत्र आ गया जो को पहले आप लकड़ी का कृषि यंत्र ले हल ले करता था उर्मा में जब ट्रैक्टर आ गया तो मैं कृषि यंत्र सारे में आ गया। तो कहने मतलब यही है कि ज्यो ज्यो आप पानी की समस्या खत्म हुई ज्यो ज्यो आप कृषि में नया नवाचार आया जिसकी स्थिति यह हुई कि भाई आप साइड में पहले आप देखता था कि आप कैर सांगरी बैर बैर भी एक दो प्रकार ही मिलता था लाल कलर का छोटा छोटा बैर को या हरे कलर का छोटा सी बैर को उस बार मिलता था। लेकिन आज आप भी देख रहे हो कि भी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अपने नवाचार किया गया और उरो पूरा पूरा फायदा उठाया आप इतने कृषि किसानों ने। और किसानों जब ये फायदा उठाए तो आप पूरे क्षेत्र में आज आप देख सकते हैं कि आज अपन अनार भी मिल रहा है ये तो अपना कीनू भी मिल रहा है ये तो अपन खजूर भी मिल रही है ये तो अपन बैर में भी कई प्रजातियाँ मिल रही है। तो कहने मतलब यही है कि भाई जियो जियो कृषि में विस्तार हो कृषि में वैज्ञानिक पद्धतियाँ बढ़िया तो और कृषि में नवाचार होया तो आप कृषि क्षेत्र पर भी बढ़ी हो। और उसके साथ साथ आप जो है क्षेत्र है इस क्षेत्र में आप किसान भाई है जो को जीरो राइडो हो या इससे हो ये मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये नकदी फसलों भी है और फसलों अड़ियों हैं कि जो को मतलब अपन मूल्य भी ज़्यादा मिले। और तो किसान भाई आप जीरे में इस सब में

0: ईरमोई अपना पूरा पूरा खेती बाड़ी कर रहा है, और दूसरो ईरमोई कोई भी समस्या हो करे तो अपना कृषि अधिकारी बैठा है जो को नया नया नवाचार करे उन्हें बताओ कि भी थोड़े अगर ये फसल में ए दिक्कत आवे तो थोड़ा ए काम करना है, तो उस भी बहुत प्रभाव पड़ियो। और कृषि कार्यालय ईरमोई किसानों वास्ते समय समय में थे कार्यशालाओं आयोजित की जाए जिके में किसानों बारे में किसानों ने अलग अलग चीज़ों बताई जाए जैसे सभी किसान भाई आप रखे तो मैं उस चीज़ों वैज्ञानिक तौर में वो कार्य करे तो वैसू अपरी जो जैसलमेरी जो कृषि है वो बढ़ी है और अच्छी हुई है। तो वो पूरा पूरा आप कह सकें कि भाई जो आज रहा युवा है युवा किसान है जो को आप आज पूरा पूरा खेती में ध्यान दे रहा है, और आपको घनी बार ये भी सुनने में आई कि भाई आज एक इंजीनियर तो जो आप नौकरी छोड़ के आज कृषि क्षेत्र में आप भाग्य आजमा रहे हुए, तो निश्चित रूप से देखो कृषि क्षेत्र में अगर व्यक्ति बढ़िया तरीके से काम करे नया नवाचार करे तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सके। और अपर प्रधानमंत्री जी भी यही जो है कि भी हर किसान की आय दुगनी हुए तो वो वास्ते भी सरकार द्वारा कई प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, और किसान भी है जो को बढ़िया मेहनत करके और आप काम कर रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो मैं आज रो आप बात कर रहा हूँ और हम आपको सुन रहे राजस्थानी लोकगीत और पक्ष और कर सो आप बात।

0: बहुत ही बढ़िया, राजस्थानी लोकगीत। और आप बात कर रहे थे कृषि में नवाचार की, बात कर रहा था, और
1: बिल्कुल
0: हमें जो समय आसे तो समय बरसात रो भी आसे और किसान भाई है जो आपने खेती बाड़ी में पछे तैयारी भी चालू कर से, तो कृषि में जब आप अच्छी तैयारी चालू करी तो सबसे पहले आई जाए कि भाई आप जितना भी कृषि यंत्र है वो देखभाल रखनी जरूरी हुई, और उसके साथ साथ आपोरे जो खेत है जो किसान भाई अगर जो साल दे 3 फसल वाली वो तो खेती बाड़ी चलती रही, लेकिन कुछ किसान भाई है जो 2 फसल ले तो जो ऐसे समय है जो इस समय को कृषि कार्य को नहीं हुए, तो ये वास्ते की करना पड़ सके भाई सबसे पहले अपनों जो खेती है कि जो खेत आप और में अपनों गहरी जुताई करनी पड़ सके।
1: बिल्कुल
0: गहरी जुताई करने से क्यों जो आप फसल और हमारे जो दीमक है या मोए जो को भी अड़ा अनचाहा पौधा है या कोई भी आप जमीन में जो जीव है वो अगर बढ़िया है तो आप अगर गहरी जुताई कर सो तो वो सब बाहर आ जाए, और बाहर आने से हो जाए कि भी वो जो को भी कीड़ा है मकोड़ा है या कोई भी दीमक भी है कोई, तो वो सब बाहर आने से गर्मी से करके वो खत्म हो जाए। तो किसान भाई ना सबसे पहले तो काम यही करना है कि आप कृषि यंत्र तैयार करके और जो को भी आप खेत है खेत में अपना गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने से बाद अपन जो को खेती बाड़ी वास्ते जो को भी अपन बीज खरीदना है या जो को अपन समय सबसे बड़ी बात है समय चुनना है कि समय अपन खेती बाड़ी जद करनी पड़ जाए, जद अपन खेती करने रो जो तापमान है टेम्परेचर है वो भी आप बिल्कुल सही होना चाहिए। जब तक वो टेम्परेचर सही नहीं आ सके जब तक आप ना तो बीज में बो सको ना कोई खेती बाड़ी कर सको, क्योंकि हर फसल रो बोन रो फसल रो सिंचाई करने रो हर चीज़ रो अलग अलग समय हुए, तो अपन सबसे पहले तो अपन समय रो भी चयन करना पड़ से, और उस साथ साथ अपन बीज बीज लेने वास्ते भी अपन हर चीज़ रो अपन थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ से। कुछ किसान भाई है जो की हुई कि आप खुद रे खेती रहा जो को बीज हुई उन्हें संभाल रखे और हर साल में वो बुआई करता रहे, और वो साथ साथ फसल चक्र भी अपनाना जरूरी है। फसल चक्र अपनाओं से आप खेती री जो को क्षमता है वो बढ़ जावे पैदा करने री, और वो साथ साथ मिट्टी पौने री जाँच ये बहुत ही आवश्यक है कि भी अपना मिट्टी पौने री जाँच तो बहुत ही जल्दी कराना चाहिए, और उस अपना ऐठा पड़ जा से कि भी अपोरे जो को जमीन है उनमें अपन की तत्व की कमी है, और वास्तव ही जगह अपन भी जमीन रहा जो को भी एक चार कॉर्नर है या एडी जगह उस अपन मिट्टी लेवनी है, अपन कोई पेड़ नीचे से मिट्टी लेना को नहीं आप वो तो कोई दोरो बंदी करो उस मिट्टी कौन लेवनी जे तापर खेती बाड़ी आप करें वो सो अपन चार जगह सो वी आकार वी शेप रहे मोए 15 से 20 सेंटीमीटर खड्डा खोद के अपन मिट्टी लेवनी है, और वो मिट्टी लेके अपन पूरी मिट्टी बेड़ी करनी है इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करने के बाद जो तो मिट्टी अपोरे यहाँ रह जावे कभी 250-300 ग्राम तक रह जावे तो मिट्टी लेके अपन जो को भी अपोरो हेल्थ सेल्थ कार्ड ऑफिस है और ले जाए अपन देवनी है, और उस पहले वो मत अपन अपोरो जमीन अपोरो नाम और जमीन का खसरा नंबर और खाता नंबर ये सब लिख के अपन विभाग में देना है। जब वो अपन अपोरो रिपोर्ट दे से तो ऐठा पड़ जा से कि भाई अपोरो जमीन में की तत्व की कमी है, तो अपन वो हिसाब से अपन जमीन में जो को भी अपन छिड़काव करना हो या की भी करना है तो वो अपन करना है, और उसके साथ साथ अपन ये भी देख रहे हो कि भाई अपना जो किसान भाई है वो जैविक न छोड़ के और रासायनिक और बढ़ रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो देखो कि भाई जब आप रासायनिक उसको खेती कर रहे हो तो पूरा नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। पहला नुकसान तो यही है कि भाई आप पैसा लगे,
1: सही है
0: और पैसा लगने के बाद जब जो आप वो जहर खरीद रहे हो रासायनिक खरीद रहे हो तो पूरा अपन जो को भी नियम कायदा है कि भाई उन छिड़काव करना हो तो जिसका सही हवा चल रही है अपन उस साइड छिड़काव करना है, या अपना पूरा पूरा कपड़ा पे रखना है आँखें में चश्मा लगाए रखना है शरीर पूरा ढक रखना है, तो जब अपन ऐठा है कि जब अपन छिड़काव कर रहे हो उसके बाद भी अपन इतनी आही आही तक मतलब अपना जो पर शरीर तो ध्यान रखना है, तो जो कोई छिड़काव अगर आप जमीन में से कर रहे हो तो जमीन की हालत की वजह से
1: बिल्कुल
0: जब आप
1: बिल्कुल
0: शरीर भी आप ठाए के भी शरीर में छिड़काव करने से
1: आपको शरीर
0: शरीर
1: का
0: में
1: नुकसान हो रहे हो
0: नुकसान
1: है
0: हो रहे हो तो
1: बिल्कुल
0: आप जमीन में भी तो नुकसान हो से,
1: सही बात है
0: तो किसान भाई थोड़ा से ध्यान रखना चाहिए कि भाई ठीक है कि थोड़ा पहली 2-3 साल 4 साल फसल बढ़िया थोड़ा मिल जा से, लेकिन आने वाले समय में हो जा से कि भाई जो जमीन है वो
1: बंजर होने
0: पूरी बंजर
1: चालू
0: हो जा से
1: चाहिए
0: थोड़ा उत्पादन देने की क्षमता कम हो जा से और थोड़ा उत्पादन कौन देवे ये
1: बिल्कुल
0: वास्ते इस कह सो कि भाई जितो हो सके जैविक प्रयोग करो खेत री खाद खेत में तैयार हो जा से कम लागत में फसल तो तैयार हो जा से, और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है, अगर जो कोई एक जैविक सो आप पर उत्पादन हुए, एक आप रासायनिक सो उत्पादन हुए, अगर बाजार में जाए के आप दो ही फसलों जो अनाज अलग साइड में रख दो, कि अभी ये जैविक रहा जैविक फसल से उत्पादित अनाज है और रासायनिक से उत्पादित अनाज है, तो हर व्यक्ति रो पहलो हाथ जैविक पथे ही जासे।
1: बिल्कुल,
0: तो हमें देख लो कि भाई और अपन देखो खर्चो कम लग से और वो लागत भी अपन बढ़िया मिल जासे, रासायनिक से भी बढ़िया अपन वो लागत मिल जासे, तो अपन फायदो भी ज्यादा हो से। तो किसान भाई सब पाई कहो कि जितो हो सके आपने खेती रे मोए हमें नई जो सीजन चालू हो रही है तो वो मोए जैविक ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। और आप तो किसान भाई ने कि साथ ही अपने आप और देखो समय भी हो कि संगीत रहो और सुन जा आप एक राजस्थानी लोकगीत।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम, यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। आज के कलाकार है शोभा हर्ष।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत। आज की कलाकार थी शोभा हर्ष। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: जैसे होंगे लाखों कोई भी तुझ सा नहीं है मेरे
1: महबूब मेरे महबूब मेरे।

हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी।

सुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी।

मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। मैंने हंसने का वादा किया।

0: आइए सुनते हैं फिर मिलन का ये गीत। इस गीत को गाया है मुकेश ने।
1: राम करे

बहाने जाए लख देवाली का। रेशमी तन

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज के कलाकार है मेहंदी हसन।

लेकिन तैयार रहिए इसमें आप, नए पहलाओं के साथ कोशिश करूंगा मैं, जो कि कोशिश करूंगा जो अलग होंगे, जो आप लोगों की टेपों में नहीं हो शायद।

उम्र से हो लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हो लज्जत।

0: खास ये गजल शेर अर्ज है।
1: कुछ तो

0: दो शेर नए हैं, अहमद फराज साहब के नहीं है, लेकिन रदीफ और काफिया एक ही है। अब ये नहीं कह सकता मैं कि अहमद फराज साहब ने पहले गजल लिखी है या उन शायर ने पहले गजल कही है, तो उनके शेर है।
1: माना माना कि मुहब्बत का छुपाना है मुहब्बत, माना कि मुहब्बत का

कि मुहब्बत का छुपाना है मुहब्बत माना कि मुहब्बत का

जैसे जैसे जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं

जैसा तुम्हें आते हो ना आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं

जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं, जैसे कैसे कैसे जैसे जैसे जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने

0: ये आए
1: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। यह आकाशवाणी जैसलमेर का रेडियो गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं समाचार संध्या और उसके बाद 9 बजे न्यूज एट 9, जैसे हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।

0: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बर। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है।

0: हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

एक्सरसाइज स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली बिहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप की गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई, हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को

0: को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज है, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। बीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर

0: गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एडेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एदजान खलमा खानाउ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defense Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defense manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Center asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defense infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Teerth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defense, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the U.S. perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this, Pacific, inaugurating the US Embassy Support Annex building in New Delhi. Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। यह है रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर। आइए चलते हैं दिल्ली और सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान भारती।
1: पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
2: और मैं संजय किशोर।
1: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
2: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर,
1: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
2: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
1: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
2: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुँच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थी। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू। 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT कुछ NIT कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
5: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोग का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, तो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं और उससे क्या है कि अगर आप मटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है प्लास्टिक से तो उसको जलाया जाता है तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसको स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउअडेज क्या एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च मिला है इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट्स लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
3: और और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुँचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था, हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
6: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चले गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये अच्छी जानकारी साबित होगी।
3: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
0: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असंरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
7: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिक पाए हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, वो सब तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी जिसकी उत्पादन क्षमता यहाँ से 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
3: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाली दरभंगा।
8: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर से धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
0: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
9: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे है उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाइकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था। हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला ये जानकारी, और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है वो जब बड़ा हो जाएगा वो रेड जायंट हो जाएगा हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
3: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रासायनिक विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर। आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
0: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार।
10: शब्द ब्रह्म के मूलमंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी तस्वीर के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार अध्यक्ष बिहार विधानसभा हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साक्षी। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विशेषता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य शिक्षा विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा छिलकती है।
3: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
11: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशिष्ट रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
12: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। क्योंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना चाहते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
0: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
13: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहां से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपनी अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। श्रोताओं, समय रात्रि के 10 बजे हैं। अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: केरल वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिकोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
3: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। We bring you a Carnatic vocal concert by Sri C.P. Madhavan Nambudiri, popularly known as Changrasheri Madhavan Nambudiri. He is an A-grade vocal artist of Akashwani and a highly respected performer with over 2 decades of distinguished contribution to Carnatic music. He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Sri Umayar Puram K. Shivaraman, Sri Sri Mushtam Raja Rao, and Sri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudiri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankaranarayanan and also received advanced guidance from renowned musicians Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer at the R.L.V. College of Music and Fine Arts, Tripunatra. He is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
4: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation.

0: बेस्ट विशेष टू आकाशवाणी फॉर कंप्लीटिंग सक्सेसफुल 90 ईयर्स।
1: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
2: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
1: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंडु चापु ताल में निबद्ध है।
2: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कंपोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचम सेट टू खंडु चापु ताल।
3: परम पुरुषम

ಇದ ಮದ ನಿಮ್ಮ ಮುರಳಿನ ಅದ.

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

Yeah.

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: The next item is रावे हिमगिरी कुमारी in the राग तोड़ी, set to आदि ताल, composed by श्यामा शास्त्री।
2: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

kanjika maji ambaza pe imadiri umare kanjika maji para

dani dari dani dani da gari dagari dani mada mada magi.

Give me the money.

ಮಾರಾಧ ಗೀರೋ ನಮಿ ರಾಧ ಗದ.

கண்டி தீ

ಕಲಿಯದಿ ಕಮಲ ನೀನುನ ಕಲೋವೇದಿ ನದಯ ನೀಯವೇ ಜಾಮ ನುದೇ

0: ये था तन्यावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: That was तन्यावर्तनम played on the मृदंगम by विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार and on the घटम by श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन का समापन पुदुकोड कृष्णमूर्ति की एक रचना श्री हरे से कर रहे हैं, जो कि राग रेवती पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद श्री हरे कंपोज्ड बाय पुदुकोड कृष्णमूर्ति इन द राग रेवती सेट टू आदि ताल।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंदनाश्री माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin.

0: Vidwan Kottiyam G. Santosh Kumar on the Mridangam and Sri Vadapli R. Krishna Kumar on the Ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Thiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमिर जानो से
2: यह रेडियो गोल्डन सिटी जैसलमेर एफएम एंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं समाचार जिसे हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार
1: वृद्धि के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वीं रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस

0: हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति
1: और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सोहत वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सोहत वशिष्ठ को एबेक एतोबोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को अफगान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।